आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की नवीं तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026 स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। लीजिए सुनिए समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

0: के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:05 हो रहे हैं। ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। लीजिए सुनिए आराधना कार्यक्रम।

राम केवल एक नाम नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने की कला है। अपने भीतर राम के विचारों को अपनाना ही सच्ची राम भक्ति है। श्रोतो लीजिए सुनिए वीणा सहस्त्र बुद्धि के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। नज़रों से देखो तो कड़कड़ में, और अंतर मन से देखो तो जन जन में है प्रभु। श्रोताओं लीजिए सुनिए हरिओम शरण के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: आराधना कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। श्रोताओं आप कहीं मत जाइएगा, अपने रेडियो सेट की रहिएगा करीब, हम बस अभी हाजिर होते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे?

0: तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र में। और श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हे प्रभु, न मैंने तुझको देखा न कभी हम मिले, फिर भी ऐसा लगता है कि तू हर वक्त मेरे साथ है। श्रोताओं लीजिए सुनिए पंडित राजन साजन मिश्रा के स्वर में गाए इस भक्ति रचना को।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु कार्यक्रम। विचार बिंदु कार्यक्रम में आज आप सरोजनी नायडू के विचार सुनेंगे।
1: विश्व की सुप्रसिद्ध कवित्री तथा भारत के राष्ट्रीय क्षितिज की कर्मठ नायिका श्रीमती सरोजनी नायडू अपनी विलक्षण प्रतिभा, काव्य कुशलता, वक्तृत्व शक्ति, राजनीति ज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण केवल भारत में ही नहीं वरन समस्त एशिया के नारी जगत में विशिष्ट स्थान रखती थी। सौभाग्य से सरोजनी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा के बराबर मौके थे। उनके पिता श्री अघोरनाथ चट्टोपाध्याय यूं तो थे बंगाली, पर वास्तव में उनकी कोई खास जाति नहीं थी। उन्हें सब जातियों से प्रेम था और वो सबकी अच्छाई ग्रहण करना चाहते थे। वो बहुत बड़े विद्वान भी थे। उनके संबंध में स्वयं सरोजनी ने लिखा है, मैं समझती हूं कि सारे भारत में उनसे ज्यादा विद्वान थोड़े ही लोग होंगे। उन्हें जो कोई भी जानता था प्यार करता था।

0: चेहरे की विशेषता एक लंबी दाढ़ी थी। यूनानी कवि होमर से उनका चेहरा बहुत कुछ मिलता था। वो बड़े मिलनसार और हंसमुख प्रकृति के थे। उन्होंने अपना सारा धन दो कामों में खर्च किया, एक तो दूसरों को सहायता देने में और दूसरा अल्केमी यानी सोना बनाने के रहस्यमय रासायनिक प्रयोग में। उनके घर में एक दरबार सा लगा रहता था जिसमें सब धर्मों के विद्वान, राजा, रंक, संत, संसारी इत्यादि इकट्ठा हुआ करते थे। सन 1919 में जिस समय पंजाब का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय वे लंदन में स्वास्थ्य सुधार कर रही थीं। इस घटना से उनके हृदय पर गहरी ठेस लगी और अस्वस्थता में भी उन्होंने डायरशाही के विरुद्ध घोर आंदोलन किया। उस समय इन्होंने गांधी जी को लिखा था, पंजाब हत्याकांड की आग देश की आजादी से बुझ सकती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे हृदय का रोग हो गया है और वो काफी बढ़ गया है, मगर मेरा दुखता हुआ हृदय तब तक शांति नहीं पा सकता जब तक मैं भारत की करुण कहानी सुनाकर सारे संसार के हृदय को न हिला लूंगी। वे अत्यंत गर्व के साथ कहा करती थीं, मैं उस जाति की वंशजा हूं जिसकी माताओं के समक्ष सीता की पवित्रता, सावित्री के साहस और दमयंती के विश्वास का आदर्श है। वे भारतीय नारी की शक्ति से पूर्ण अवगत थीं और उनकी महत्ता को स्वीकार करती थीं।
1: श्रोताओ, विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सरोजनी नायडू के विचार सुन रहे थे। इसी के साथ विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। सपने वो नहीं जो हमें सुलाते हैं, सपने वो हैं जो हमें जगाते हैं और कुछ नया करने को प्रेरित करते हैं। गांधी जी ने कहा कि कल पर कुछ न टालो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो कुछ करना है आज और अभी करो।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:35 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हमारे किसान भाई सुनेंगे पशुओं में परजीवी कारण और बचाव, और इस विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार से बातचीत की है राकेश कुमार मौर्य ने।
1: मार किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ना, खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन का भी काम करथिन। पशुपालन में देखे में आवत भाई तमाम तरह के रोग दोख बेरामी होते हैं, लेकिन कुछ बेरामी ऐसा होते हैं जेका परजीवी के कारण होते हैं, चाहे जौन अंतः परजीवी हो या बाह्य परजीवी हो। तो पशुओं में परजीवी कारण और बचाव पे बातचीत के विषय है बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बाटन डॉक्टर मनोज कुमार जी, जौन की पशु चिकित्सा अधिकारी बाटन। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत बा। हमारे किसान भाई ने आप ये बतावें कि पशुओं में जौन परजीवी होते हैं वो कौन कारण से होते हैं, और बचाव का क्या उपाय है बतावें आप।
2: जी किसान भाइयों, पहले तो ये जान लीजिए कि परजीवी होता क्या है।
1: हाँ,
2: ऐसे जीव जो

0: दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होते हैं।
1: अच्छा,
0: जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं,
1: हाँ,
0: वो दूसरे जीव का ही भोजन खाते हैं,
1: अच्छा,
0: उसी के ऊपर
1: अच्छा,
0: रहते हैं,
1: हाँ हाँ,
0: या उसके शरीर के अंदर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं।
1: अच्छा,
0: और जिसके शरीर के अंदर रहते हैं उसे परपोषी कहते हैं।
1: अच्छा अच्छा, मतलब क्या है कि मतलब भाई जो अपन भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पास आश्रित रहते हैं, वो परजीवी होते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और बताओ डॉक्टर साहब,
0: ये परजीवी दो तरह के होते हैं
1: कौन कौन?
0: मुख्यतः जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं उसे बाह परजीवी कहते हैं, और
1: अच्छा,
0: जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसे अंतः परजीवी कहते हैं। बाह परजीवी में जैसे किलनी हुआ,
1: अच्छा,
0: जोंक है,
1: हाँ,
0: जू है,
1: हाँ,
0: जो शरीर के ऊपर बालों में चिपकी रहती है,
1: अच्छा,
0: और वो वहाँ से खून चूसती रहती है,
1: हुँ,
0: या जो मरी हुई खाल होती है उसको खाती रहती है, और कुछ होते हैं अंतः परजीवी,
1: अच्छा अच्छा
0: जो पेट में पाए जाते हैं, आंत में या लीवर में पाए जाते हैं,
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: कुछ खून में रहते हैं,
1: अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: खून चूसते रहते हैं,
1: हाँ हाँ
0: इन्हें अंतः परजीवी कहते हैं।
1: अच्छा अच्छा यानी जो बाहर रहा थे जैसे जुआ किलनी, ये सब बाह परजीवी हैं, जो शरीर के बाहर रहा थे, जो अंदर रहा थे उनका अंतः परजीवी
0: जी
1: कहा
0: जी
1: जाता
0: बिल्कुल।
1: है भैया। तो भैया हो जो पशुअन में बताए ना आपकी, का नुकसान होता अगर ये सब रहा थे, ऐसे का नुकसान होता?
0: देखिए, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, किसान भाई बहुत नुकसान उठाते हैं, क्योंकि पशुओं में इससे उत्पादन कम हो जाता है, हल्का बुखार होने से पशु चारा खाना छोड़ देते हैं,
1: जी
0: क्योंकि ये जो परजीवी होते हैं ये पशुओं के खून चूसते हैं या उन्हीं का भोजन खा लेते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है,
1: कौन कौन?
0: ये जैसे जलवायु है, जहाँ पशु रहते हैं वहाँ की जलवायु कैसी है।
1: अच्छा अच्छा
0: अगर वहाँ मौसम नमी वाला है, तराई वाला है, और वहाँ की जमीन बहुत मुलायम है, तो वहाँ ये परजीवी ज़्यादा पाए जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: दूसरा निर्भर करता है पशुओं की प्रजाति कैसी है। जो देसी प्रजाति होती है पशुओं की उसमें कम होता है, जो विदेशी प्रजाति उसमें ये परजीवी ज़्यादा पाए जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा और
0: तीसरा
1: भैया,
0: होता है परजीवियों की संख्या कितनी है। अगर परजीवी बहुत ज़्यादा हो गए पशुओं में तो उससे उत्पादन तो बहुत ज़्यादा घट जाता ही है, पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है।
1: अच्छा अच्छा
0: और है पशुओं की जो पालन की पद्धति है, हम किस तरह से पशुओं को पालते हैं। अगर साफ सफाई रखेंगे तो परजीवी कम रहेंगे,
1: अच्छा,
0: गंदगी रहेगी तो परजीवी वहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे।
1: हम तो कही कि बतावें कि कौने प्रकार के मौसम में ज़्यादा प्रभावित होते हैं पशु ई परजीवी से?
0: देखिए, जाड़े और बरसात का मौसम परजीवियों के लिए बहुत अच्छा होता है।
1: अच्छा अच्छा
0: क्योंकि उसमें गर्मी चाहिए, पशुओं के शरीर के चिपक कर रहते हैं जाड़े में, और नीचे जमीन पे घुसे रहते हैं, और जैसे पशु बैठता है फिर निकल के बाहर आते हैं, खून चूसते हैं, उसी के ऊपर रहते हैं।
1: तो आपका कहा है कि मतलब कि जाड़ा और बरसात में विशेष ध्यान देना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: तभी परजीवी ना पन पाए।
0: जी जी जी।
1: परजीवी जो होते हैं भैया रोग पशुओं में अधिक काहे बड़े होते हैं, कौनो कारण वैसे?
0: परजीवी पशुओं में ये जो दूषित चारा खाने से, दूषित पानी पीने से, या जो तालाब पोखरे हैं अगर उसके किनारे पशु चरने जाते हैं तो वो दूषित जो वो घास होती है उस घास में इसके लार्वा रहते हैं, और जैसे पशु खाते हैं तो ये लार्वा पेट में चले जाते हैं, और लार्वा जब पेट में जाते हैं तो वहीं ये अपना विकास करते हुए शरीर के और अन्य अंगों में चले जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: और फिर मल के द्वारा या थूक के द्वारा ये निकलकर फिर शरीर से बाहर आते हैं।
1: अच्छा, फिर
0: और फिर घास में फैल जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: और फिर जैसे इनको खाया जाता है तो फिर ये बढ़ते हैं, और एक बार में ये हजारों अंडे देते हैं।
1: बाप रे,
0: इतने हजारों अंडे देने से हजारों बच्चे निकलते हैं, और फिर वो हजारों पशुओं को एक साथ नुकसान पहुंचाते हैं।
1: जी जी जी। तो हम तो कही कि इनका विकास बना रहा था हमेशा, कहा कौन कारण से विकास बना रहा होत रहा था?
0: इनको सही मौसम मिल जाता है, और सही उसी समय पशु मिल गए तो इनका, और बीच में जो इनके बीच में जो पशुओं के जहाँ पे अपना कालचक्र होता है, इनका जो जीवन चक्र होता है, उस जीवन चक्र को जब पूरा हो जाता है तभी ये परजीवी विकास करते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर इनके जीवन चक्र को तोड़ दिया जाए या इनका जो पोषक पशु होता है अगर उसको हटा लिया जाए तो इनका जीवन चक्र नष्ट हो सकता है।
1: अच्छा अच्छा, ये बतावें कि अंतः परजीवी कौन कौन होते हैं, उनके बारे में कुछ बताओ।
0: देखिए, अंतः परजीवी जो पेट में कीड़े जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे गोल कृमि है, चपटे कृमि होते हैं, या

0: उसमें लीवर में होते हैं, लीवर फ्लूक कहते हैं, खून में पाए जाते हैं, उन्हें प्रोटोजोअल कहते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, वो होते हैं जो अंतः परजीवी कहते हैं।
1: अभी बतावें कि सब जौन भी परजीवी हैं, इनके से बचाव के का उपाय है पशुओं के?
0: सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि पशुओं को तालाब, पोखरे, नदी के किनारे के जो घास होती है उसको ना खिलाई जाए। चराते समय ध्यान रखा जाए कि तालाब पोखरों से दूर चराया जाए,
1: अच्छा,
0: जहाँ बराबर समतल जमीन होती है, और या घास कर काट के खिलाई जाती है।

0: उसको ना खिलाई जाए, चराते समय ध्यान रखा जाए कि तालाब पोखरों से दूर चराया जाए,
1: अच्छा
0: जहाँ
1: अच्छा
0: बराबर समतल जमीन होती है और या घास अगर काट के खिलाई जाती है तो वो वहाँ की घास पहले तो ना खिलाई जाए, यदि
1: अच्छा
0: खिलाई जाए तो उसको धुल करके साफ करके बढ़िया से खिलाई जाए।
1: अच्छा आपका है मतलब सफाई ज़्यादा
0: जी
1: रहे
0: जी जी
1: चाहे।
0: समय समय पर पशुओं को कीड़े की दवा देनी चाहिए और जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, पशु अस्पताल है, वहाँ से संपर्क करते रहना चाहिए। जो जूं किलनी की दवा है उसको लगाते रहना चाहिए समय समय पर, और विशेष ध्यान रखना चाहिए फर्शों में जहाँ दरार होती हैं, कीड़े जो ईंट के बीच में जगह होती है वहाँ ये परजीवी छिपे रहते हैं, तो
1: अच्छा
0: वहाँ
1: अच्छा
0: भी दवा का छिड़काव जरूर करते रहना चाहिए।
1: अच्छा। और क्या करें चाहे भैया।
0: और साफ सफाई तो ध्यान में रखेंगे, पशुओं को जो चारा दाना पानी देंगे उसको भी देख करके देंगे कि इसमें कहीं से उनके अंडे नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आप सही जगह से पानी लें, सही जगह से चारा लें
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: पशुओं को देखभाल करते रहें।
1: अगर हो
0: इस
1: जाए तो क्या करें चाहे।
0: उसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी से जो पशु अस्पताल है वहां जाकर के संपर्क कर उसके अनुसार दवा लेकर के खिलाते रहना चाहिए, जिससे ये कीड़े या अंडे खत्म हो जाते हैं और पशु परजीवियों से मुक्त हो जाते हैं।
1: का कोनो टीका भी आवा था कि लगाए दे तो होबे ही नहीं करे ये सब।
0: नहीं, इसका कोई टीका नहीं आता है, इसके
1: अच्छा।
0: दवा और कुछ अब इंजेक्शंस भी आ गए हैं वो भी दिए जाते हैं, लेकिन इसका कोई टीका इस प्रकार का नहीं अभी तक बना है।
1: आप कहा है कि मतलब कि एक बचाव ही ज़्यादा अच्छा
0: जी
1: बात
0: जी
1: है, यानी कि बचाव में साफ सफाई ज़्यादा रखे चाहे, खान पान खियावत की समय, पानी पियावत समय, या बांधा जहाँ हुआ पर भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह
1: तो
0: रहे
1: हम कहे
0: हैं।
1: डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप पाएन पशुओं में परजीवी कारण और बचाव के बारे में बहुत अच्छे से बताएं, हमारे पशुपालक भाई का जरूर फायदा लें। आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

कृषि जगत कार्यक्रम में अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे पशुओं में परजीवी कारण और बचाओ, और इस विषय पर डॉक्टर मनोज कुमार से बातचीत किया राकेश कुमार मौर्य ने। इसी के साथ कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6:45 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर पीयूष सक्सेना की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय है हार्ट वाल्व की समस्या।
1: हार्ट में हमारे 4 चेंबर्स होते हैं, और जो इन चेंबर्स को जो बीच में जो टिश्यू कनेक्ट करता है उसको हम लोग वॉल्स कहते हैं। और इसी तरह से जो हार्ट के चेंबर जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से जो खून हमारे फेफड़ों में और हमारे शरीर में जाता है उनको हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। हार्ट के वाल्व की जो बीमारी भारतवर्ष में है उसमें सबसे ज़रूरी कारण जो है वो हार्ट के वाल्व का इन्फेक्शन है, जिसे हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ये बीमारी कम उम्र के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, और इसमें शुरू में पहले हार्ट के वाल्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि उसमें सबसे पहले ये बीमारी जो है घुटनों में सूजन, गले में खराश के साथ आती है। इसको हम लोग एक्यूट रूमेटिक फीवर कहते हैं। इसके साथ साथ यही जो इसका जो कीटाणु है वो हार्ट के वाल्व को भी गलत पहचान करके उसको इन्फेक्शन कर देता है, और फिर हार्ट के वाल्व में इन्फेक्शन हो जाने के कारण वो वाल्व जो है या तो सिकुड़ जाता है या फिर वो फैल जाता है, जिसके कारण हार्ट के वाल्व में सिकुड़न या फिर रिगर्जिटेशन या फिर लीक हो जाता है। कुछ हार्ट के वाल्व की बीमारियाँ जो हैं वो पैदाइशी जन्मजात भी होती हैं, परंतु इनका परसेंटेज बहुत कम है। और कुछ हार्ट के वाल्व की बीमारियाँ हार्ट अटैक पड़ने के बाद, जैसे जब बड़ा हार्ट अटैक पड़ता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, तो उसमें कुछ वाल्व से लीकेज शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग पोस्ट एमआई मिट्रल रिगर्जिटेशन या पोस्ट कहते हैं। हार्ट के वाल्व के सिम्टम शुरू में जब हार्ट का वाल्व की बीमारी होती है तो उसमें हार्ट के वाल्व की सिम्टम्स में ज़्यादा नहीं पता चलता, परंतु जैसे जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है और समय बीतता चला जाता है तो

0: शुरुआती इन्फेक्शन होने के 8 से 10 साल बाद जा कर के पहले जो लक्षण होते हैं बीमारी के वो आने लग जाते हैं। हार्ट के वाल्व के लक्षण में सबसे ज़रूरी जो लक्षण है वो है सांस फूलना, या फिर आपको रात को सीधे लेटने में सोने में कभी कभी तकलीफ़ हो जाना और रात को अचानक से नींद खुल जाना। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ट के वाल्व में सिकुड़न के कारण खून का बहाव हृदय में और बाकी शरीर में अच्छे से नहीं हो पाता और वो खून से जो है वो फेफड़ों में हल्का हल्का भरने लग जाता है, खून का पानी वाला पदार्थ जो है रिस करके फेफड़े में भरने लग जाता है। इसे हम लोग पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। हार्ट जब जो कि एक गंभीर बीमारी होती है जिसको हम लोगों को अपने अगर ये हमें तकलीफ हो रही हो तो हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई भी वाल्व हार्ट का इन्वॉल्व हो सकता है, पर सबसे कॉमनली जो है जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वाल्व होता है जिसे हम लोग मिट्रल वाल्व कहते हैं, उसमें अगर सिकुड़न आ जाना या फिर वो वाल्व इस तरह से नष्ट हो जाता है कि उसका पूरी तरह बंद नहीं हो पाता जब उसे बंद होना चाहिए, तो उसमें से लीकेज होने लग जाता है जिसे हम लोग मिट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। इसी तरह से जो वाल्व हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चेम्बर होता है हार्ट का, वहाँ से जो हमारी हार्ट की मेन नस एओटा से पूरे शरीर को खून फैलाता है जिसे हम लोग एओटिक वाल्व कहते हैं, अगर उसमें जाम आ जाए यानी स्टेनोसिस हो जाए या फिर रिगर्जिटेशन हो जाए तो उसमें परेशानी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो है सांस फूलना, काम न कर पाना, थकान हो जाना, पैरों में कभी कभी सूजन आ जाना, वजन अचानक से बढ़ जाना शरीर में पानी बढ़ जाने के कारण। इसका प्रिवेंशन जो है वो दवाओं के कारण से है और अच्छी डॉक्टरी सलाह से है। अगर हार्ट का वाल्व जो है वो दवाओं से ठीक नहीं हो सकता उसके सिम्टम, तो फिर उसमें आगे जा करके हार्ट के वाल्व का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर तो इसलिए अगर कोई छोटे उम्र का बच्चा जिसे गले में खराश कभी हुई हो और उसके जोड़ों में सूजन आने लग जाए तो उसके लिए उसको किसी डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, खून की जांचें करानी चाहिए जिससे पता चल सके कि उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ तो नहीं हुई, और उसके साथ साथ उसकी हार्ट की जांच होनी चाहिए जिससे ये पता चल सके कि हार्ट का वाल्व जो है वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप डॉक्टर पीयूष सक्सेना की वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था हार्ट वाल्व की समस्या। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले हम आपको जानकारी दे दें दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। शाम 6:30 पर ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य द ओवल लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले आईसीसी टी20 क्रिकेट के प्रथम सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 2026 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनेगा प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और अब लीजिए सुनिए प्रयागराज केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुनिएगा सुबह 7 और 7:10 पर। फिल्मों से भजन कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 और दोपहर 12:15 भास्कर दास का बांसुरी वादन आप सुनेंगे। सुबह 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप बनवारी लाल शर्मा के स्वर में गाई गजलों का आनंद लेंगे सुबह 9:50 पर। सुबह 10:05 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे लोकगीत कार्यक्रम और आज आप अजक नारायण और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत का आनंद लेंगे। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 11 बजे, प्रस्तुति दीपक राय की है। दोपहर 12:30 हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु कुमार की है। दोपहर 1:15 पनघट कार्यक्रम में बहनें आज की बात करेंगी साफ पानी के महत्व पर और हेलो पनघट पर डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना बातचीत करेंगी श्रोताओं से हमारा भोजन और पोषण विषय पर। रसोई घर में किचन गार्डन के फायदे बताए जाएंगे। शाम 5:15 युवाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस पर। प्रेरणा पुंज में दादा भाई नरोजी पर होगी बात। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

श्रोतों, एक विशेष सूचना हम आपको दे दें। दिनांक 30 जून सन 2026 यानी आज को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डायटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक इस फोन नंबर पर कर सकते हैं। फोन नंबर नोट करें, फोन नंबर है 0532297046 और 0532243649। इस फोन नंबर पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

शिव मंदिर में गुरु की अनदेखी करके अपमान करने के कारण उस जन्म में शूद्र शरीरधारी काकभुशुंडी को भगवान ने सर्प हो जाने का श्राप दिया तो कृपालु गुरु हाहाकार कर उठे। स्तुति करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। आशुतोष ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। विप्र ने दो वर मांगे, एक अपने लिए शिव चरणों में भक्ति और दूसरा शिष्य की शाप मुक्ति।

श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। और अब लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला भजन हम आपके लिए लेकर आए हैं काजल फिल्म से, और इस भजन को अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर ने। साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि ने संगीतबद्ध किया है। तो आनंद लीजिए इस भजन का।

आप लीजिए सुनिए सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये भजन। इस भजन को अपने स्वर से सजाया है लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीतबद्ध किया है और ये भजन चला आपके रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रूपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्रीराम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई कल अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने कल श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की

0: जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में कल 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पीलीभीत सहित प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
1: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
2: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
0: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम डिजिटल युद्ध स्मारक त्रिशूल भारतीय रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। उन्होंने मुरादाबाद में विकास कार्यों, राजस्व, कानून व्यवस्था तथा लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना के संबंध में मंडलीय समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। स्टैंप और न्यायालय शुल्क तथा पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
3: स्टैंप विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम विस्तृत बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ उसको हम निरस्त करते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार कल से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल HSD की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 12 जून को ये अस्थायी नियामक उपाय लागू किए थे। इसके तहत खुदरा पेट्रोल पंपों पर प्रति ग्राहक या प्रति वाहन प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर हाई स्पीड डीजल HSD देने की समय सीमा तय की गई थी। साथ ही औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि वो ईंधन की खरीद खुदरा पंपों के बजाय निर्धारित उपभोक्ता पंपों से करें।

0: गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर में 15 बेड के निजी वार्ड और ललित नारायण मिश्र रेलवे हॉस्पिटल में 13 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू का उद्घाटन किया। सांसद निधि से तैयार इन दोनों सुविधाओं के उद्घाटन के अवसर पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने कहा कि गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। फिरोजाबाद जिले के फरीहा थाना क्षेत्र के चिडरई गांव में बीती रात तेज आंधी के कारण एक ई रिक्शा पर पेड़ गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एटा जिले के अबागढ़ से करीब 8 सवारियों के साथ फरीहा आ रहे ई रिक्शा पर अचानक पेड़ गिर जाने से ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और सवारियां पेड़ के नीचे दब गईं। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय 5 सवारियों की मौत हो गई। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दैवीय आपदा कोष से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराया जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में बीते 36 घंटों में कहीं कहीं हल्की से लेकर मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। पीलीभीत जिले में बीती रात से हो रही वर्षा से वहां के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर सहित कुछ अन्य जिलों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 2 दिनों के भीतर मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुरादाबाद को दी 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और कल से समाप्त हो जाएंगे पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको भास्कर दास का बांसुरी वादन सुनाएंगे। राग है अहिर भैरव। आपके साथ तबले पर संगत किया है विनोद कुमार मिश्रा ने।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप भास्कर दास का बांसुरी वादन सुन रहे थे। राग था अहिर भैरव और आपके साथ तबले पर संगत किया था विनोद कुमार मिश्रा ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए एक विशेष सूचना। दिनांक 30 जून सन 2026 यानी कि आज को प्रसारित होने वाला सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक इस फोन नंबर पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर नोट करें, उठाइए कागज और कलम 0532-2970-462 और 0532-2423-649। इस फोन नंबर पर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 0532-2970-462 और 0532-2423-649। आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। सूचना समाप्त हुई।

एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: झिलमिल सितारों से बच्चों की मुस्कुराहट समाती है बाल संग बाल गोपाल और नन्ही दुनिया में।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों का प्रसारण हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च

0: न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय आदिवासियों कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
2: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अब

0: अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों

0: में शामिल हो जाती है। ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy. Cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. At the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. There withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap.

0: that led to a penalty shootout in Foxborough. Gustavo Alfaro's men held their nerve in the penalty shootout to secure a historic 4-3 victory. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. Heavy rainfall is also expected over Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbh, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
1: Thank you, Abhishek. A month-long special intensive revision SIR of the electoral roll beginning today is covered by some of the dailies. SIR process begins in Delhi and four states today, reports the Asian Age. Voter verification drive begins in Delhi today, leads the Times of India. The statesman quoting Prime Minister Narendra Modi says, Indian diaspora living bridge between India, Seychelles. Bengal passes preventive detention legal curbs bill, notes the Hindu. Prime Minister to skip Khamenei's state funeral leads the Asian Age. And finally, Delhi mandates all two new wheelers to be electric from 2028 to fight pollution, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Minister announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicles policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आर्जी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हरमुज से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे और फुटबॉल में अमरीका के ह्यूस्टन में ब्राज़ील जापान को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम से मुतालिक आयद आर्जी जाबता जाती पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के तमाम पेट्रोल पंप पर मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वजारत के बयान के मुताबिक मगरबी एशिया के बहरान के दौरान आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ, ताहम हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों को मुस्तहकम रखकर आम सार्फीन को इसके असरात से महफूज रखा। इसके नतीजे में खुर्दा कीमतों और बड़ी मकदार में ईंधन खरीदने वाले सार्फीन के लिए मुकर्र कीमतों में नुमाया फर्क पैदा हो गया। वजारत ने कहा कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए 12 जून को आर्जी जाबता जाती इकदाम नाफिज किए गए थे, जिनके तहत पेट्रोल पंपों पर हर सारिफ या हर गाड़ी को रोजाना ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर हाई स्पीड डीजल फराहम करने की हद मुकर्रर की गई थी। इसके अलावा सनअती इदारा जाती और कमर्शियल सार्फीन के लिए भी खसूसी जाबते नाफिज किए गए थे। इन इकदाम का मकसद डीजल की कालाबाजारी, जखीरा अंदोजी और गैर कानूनी

0: शिवराज सिंह चौहान आज से शुमाल मशरकी रियासतों का दोरोजा दौरा करेंगे। जनाब चौहान आसाम के गुवाहाटी में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम।
1: कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेशल्स के दौरे को सफाए अव्वल पर नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, सेशल्स के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हुए मोदी। यकम जुलाई से पेट्रोल और डीजल घरेलू ईंधन से मुतालिक हंगामी इकदाम के खात्मे की खबर

0: बताते हैं कि आम क्यों खास है। अच्छा, आम के बारे में हम आपको बता दें, लेकिन उससे पहले एक संदेश आपको सुनवा देते हैं। तो आप अपने रेडियो सेट के रहिएगा, करीब कहीं मत जाइएगा, हम बस अभी हाजिर होते हैं इस संदेश के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आम एक ऐसा फल है जिसे कच्चा भी खाया जाता है और इसके पकने के बाद भी आम प्रेमी बड़ी चाव से इसे खाते हैं। तो बस चाव की जब बात हो रही है, तो क्यों ना आपको एक गीत मैं आपको सुनवा दूं, क्या कहते हैं? बातें और भी करेंगे, लीजिए सुनिए आनंद इस गीत का।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज प्रेजेंटिंग अ फिलोसॉफिकल रिसर्च that has been conducted on mangoes, incorporating in it romance, humor, and fun. Please give it up for Sameer.

श्रोताओं, गीत सुनकर आपको कैसा लगा? उम्मीद है आनंद आया होगा। तो जिस आम को आप इतनी चाव से खाते हैं तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं आम का इतिहास। भाई आम का इतिहास श्रोताओं अत्यंत प्राचीन है। भारत के निवासियों में अति प्राचीन काल से आम की उपवन लगाने का प्रेम है। यहाँ के उद्यानी कृषि में काम आने वाली भूमि का लगभग 70% भाग आम की उपवन लगाने के काम में आता है। आपको बता दें कि भारतवासियों के जीवन और अर्थव्यवस्था का आम से घनिष्ठ संबंध है। इसके नाम भी अनेक हैं, चौसा, दशहरी, सफेदा, लंगड़ा, हाफोसाम। अच्छा आपको बताऊं, पौराणिक कथाओं में इसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता था, अर्थात मनोवांछित फल देने वाला। मुगल सम्राट अकबर ने लाल बाग नाम का 1,00,000 पेड़ों वाला उद्यान दरभंगा के समीप लगवाया था, जिससे आम की उस समय की प्रति लोकप्रियता स्पष्ट हो। लोकगीत के गायकों ने आम पर बहुत सारे लोकगीत गाए हैं और हमारी रीति व्यवहार, हवन, यज्ञ, पूजा, कथा, त्यौहार सभी मांगल कार्यों में आम की लकड़ी, पत्ती, फूल, मतलब आम का हर एक भाग काम में आता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब कोई त्यौहार आता है तो कहते हैं ना कि भाई दरवाजे पर तोरण बनाकर लगा दीजिए आम के पत्तों का। और पता है श्रोताओं, बहुत सारे लोग तो इतना खूबसूरत तोरण बनाते हैं, बंधनवार जिसे कहते हैं, क्या खूब लगता है भाई, लगता ही नहीं कि क्या क्रिएशन है, मतलब देख करके लगता वाह क्या बात है, उन्होंने हाथ से बनाया है ये लगता ही नहीं है। पत्तों को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके बनाया जाता, मतलब आम हमारे जीवन में किस तरह से सम्मिलित हैं ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। उपयोगिता की दृष्टि से भी आम भारत का ही नहीं समस्त उष्ण कटिबंध के फलों का राजा है और बहुत तरह से आम का उपयोग किया जाता है। तो आम के उपयोग के बारे में हम आपको बता देते हैं कि कच्चे फल से चटनी, खटाई, अचार, मुरब्बा बनाया जाता है। वहीं इस बेतहाशा गर्मी में आम को भूनकर पन्ना बनाया जाता है। और भाई आम का पन्ना तो आपको हर जगह मिल जाएगा और इसे पीने के बाद दोस्तों वाह क्या तरावट आती है शरीर में। और आपको बताऊं, अगर आप एक ग्लास घर से आम का पन्ना पीकर निकलते हैं तो आपको लू नहीं लगती है। अच्छा, आम के पकने पर इसे धूप में रखकर अमावट तैयार किया जाता है। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अमावट खाई होगी और आज अमावट हमारे सब में, मतलब हम लोग दूर हो गए हैं इन सब चीज़ों से, जो गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे तो वो अमावट ज़रूर खाए होंगे। यानी यूं ही नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय फल है। आम के फल में विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपको अगर अपना वजन बढ़ाना है तो अपने खाने में आम को ज़रूर सम्मिलित करें, ये पोषक और स्वास्थ्यवर्धक फल है। आम की विशेष उत्तम प्रजातियों के बारे में हम आपको बता देते हैं श्रोताओं। वाराणसी का लंगड़ा, रत्नागिरी का अल्फासो और मलिहाबाद और लखनऊ के दशहरी और सफेदा बहुत प्रसिद्ध हैं। नई प्रजातियां हैं नीलम, लालपरी, मालगोवा, आम्रपाली, रत्ना, सुवर्णरेखा, बॉम्बे ग्रीन, मल्लिका, केशर, फजली। श्रोताओं बहुत सारी प्रजातियां हैं आम की, मैं कितनी प्रजातियों के बारे में आपको बताऊं भाई। अरे हमने तो आपको इसका वैज्ञानिक ही नाम नहीं बताया। अब अगर कोई आम वाला आपको इसके वैज्ञानिक नाम से लेकर बुलाता है तो आप सोचेंगे कि भाई ये कौन सा फल बेच रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। सुना आपने, मैंगीफेरा इंडिका। आम का फल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है।

हेलो श्रोताओं, आज हमने बात की अपने राष्ट्रीय फल आम पर। कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अब अपनी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की थी। नमस्कार प्रयागराज, आनंद लेते रहिए इस गीत का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: पापा लाइए 3000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
0: श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं दबंग फिल्म से, और इस गीत को अपनी स्वर से सजाया है राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने। फैज़ अनवर की रचना है, साजिद वाजिद का संगीत है। भाई आंखें जो है ना, बहुत कुछ बयां करती हैं। देखिए इस गीत में किस तरह कहा गया है कि तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन।

निगाहें जो है ना बहुत कुछ बयां करती हैं। अगर आपसे ये रुचि हुई हैं तो भी आप निगाहों से पता कर सकते हैं, और अगर खुश हैं तो भी आप निगाहों से पता कर सकते हैं। अब जब इन दो मस्त नैनों ने चैन खोई दिया है तो भाई नैनों से बात करने दीजिए। और अब हम आपको सुनाते हैं मुकाबला फिल्म का गीत, अनुराधा पौडवाल और सोनी।

निगम जी की आवाज में, और इस गीत को माया गोविंद जी ने रचा है और दिलीप सेन और समीर सेन ने संगीतबद्ध किया है, और ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर। आनंद लीजिए।

भाई खामोश अगर बैठ जाएंगे तो अगला गीत कैसे आपको सुनवाएंगे। नैन जो है ना, जब मिल जाते हैं तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये निगाहें नहीं मिलनी चाहिए, ये ठग लेते हैं, क्योंकि इनकी मासूमियत इतनी होती है ना कि लोग खो जाते हैं बस निगाहों में। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं ओमकारा फिल्म का गीत राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में, और इस गीत की रचना की है गुलजार ने, विशाल भारद्वाज ने संगीत दिया है। ये गीत चला आपके रेडियो सेट पर और ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: 44 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन एवं योग कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट योग प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति अमूल्य धरोहर है, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। शास्त्रों में भी स्वस्थ शरीर को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। जनपद की सभी तहसीलों, विकास खंडों और नगर निकायों, ग्राम पंचायतों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुए। कन्नौज जिले में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक खेती कार्यशाला एवं कृषि प्रदर्शनी और विकसित सघन खेत बचाओ अभियान विभिन्न जागरूक कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रदर्शनी में भूमि संरक्षण, कृषि पर्यटन, शिक्षा, पंचायती राज और सूचना सहित विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि मानव स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना रहा। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। कन्नौज जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के अवसर पर ठठिया मंडी में कृषक गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण शामिल हुए। कार्यक्रम में किसानों को आलू की नई किस्मों, आधुनिक खेती के तरीकों, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान किसानों ने विशेषज्ञों से अपनी समस्याओं और सवालों पर चर्चा की, साथ ही खेती में नई तकनीकों को अपनाने की जानकारी ली। राज्य मंत्री ने ठठिया मंडी को आलू के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के निर्णय पर उद्योग मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आभार व्यक्त किया। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि
3: कन्नौज में आलू की किसानी खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं जो नए बीज लेकर के आई, नई पद्धतियां बता रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय

0: मुख्यमंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी का कि उन्होंने निर्णय लिया है कि हमारी इस मंडी को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करेंगे आलू के लिए।
1: उन्होंने कहा कि इससे उन्नत बीज, नई खेती तकनीकों और आलू प्रसंस्करण के उन्नत तरीकों की जानकारी मिलेगी, साथ ही किसानों की आय बढ़ेगी और बेहतर मूल्य सुनिश्चित होंगे। राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि आलू सब्जी या चिप्स निर्माण तक सीमित नहीं है, इससे स्टार्च सहित अनेक औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। कन्नौज में प्रस्तावित स्टार्च प्रसंस्करण इकाई से किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कन्नौज जिले में भारत सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत टपक एवं फव्वारा सिंचाई के लिए इच्छुक किसानों को 90% तक अनुदान मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई में पानी की बर्बादी को रोकना और कम लागत में उपज को बढ़ाना है। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत किसानों को 90% तथा अन्य किसानों को 80% अनुदान का प्रावधान है। चालू वर्ष में 571 किसानों ने योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है और उद्यान विभाग ने सभी आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने बताया कि
2: प्रधानमंत्री की सिंचाई योजना के तहत 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला हमारा पोर्टेबल सिंचाई के लिए पोर्टेबल पाइप है, इसमें 65% और 75% की सब्सिडी है, और दूसरा हमारा ड्रिप और तीसरा हमारा मिनी स्प्रिंकलर है, तो इसमें 80% और 90% की छूट है। जो हमारे कृषक भाई 2 हेक्टेयर से नीचे हैं, उनका सब्सिडी स्लैब अधिक 90% और 75% स्लैब आएगा, और जो बड़े कृषक हैं उनका जो है 65% और 80% है।
1: अब तक 223 किसानों के खेतों में प्रणाली स्थापित कर उन्हें लाभान्वित भी किया गया है, जिससे जिले का 234 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में आ गया है। पिछले साल 1000 से अधिक किसानों ने आवेदन किया था, जिसमें से 705 किसानों को लाभ मिला था। कन्नौज जिले में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत सभी विकास खंडों की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल भारत की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां समाज के नौनिहालों एवं मातृशक्ति के स्वास्थ्य, पोषण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्मार्टफोन उपलब्ध होने से कार्यकर्तियों को विभागीय योजनाओं के संचालन, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पोषण ट्रैकिंग तथा शासन की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँचाने में और अधिक सुविधा होगी। तकनीक के माध्यम से कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं गति आएगी, जिससे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचेगा। कन्नौज जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जनपद में तंबाकू नियंत्रण एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लोगों को तंबाकू निषेध की शपथ भी दिलाई गई। 29 मई से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न स्थानों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां एवं प्रचार प्रसार गतिविधियां आयोजित हुई।
3: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
4: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में 569 करोड़ से अधिक लागत की 16 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने बांग्लादेश से कई दशक पूर्व विस्थापित 4693 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के कागजात सौंपे और 100 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है, बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है।
5: पीलीभीत में 5 दशक से इंतजार कर रहे बंगाली परिवारों को भी उनका जमीन का अधिकार और उनकी नागरिकता प्रमाण पत्र प्रारंभ हो गया है। इन सब के लिए आपको बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं और विश्वास करता हूं कि आप इस संस्कृति को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे।
4: उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। इस अवसर पर पीलीभीत से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश के साथ पीलीभीत जिले का भी सर्वांगीण विकास हो रहा है।
6: आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं का यहां पर क्रियान्वयन हो रहा है और धरातल पर दिखाई दे रही।
4: सरकार की जनहितकारी नीतियों और अनुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है। पीलीभीत जिले में गोमती नदी को उद्गम स्थल से अविरल बहाने और स्वच्छ रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सभी घाटों पर जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशन में जागरूकता मेला

0: का आयोजन किया गया। इनमें नदी की स्वच्छता और सफाई खुदाई के कार्यों का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा किया गया। स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। 1 जुलाई से जी राम जी योजना के तहत नदी की खुदाई और साफ सफाई के काम प्रारंभ होंगे। नदी के सभी 16 घाटों पर प्रकाश के लिए सोलर लाइटें लगाई गई हैं और बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था कराई गई है। गोमती नदी के माधव डंडा स्थित उद्गम स्थल पर ग्रीष्मकालीन गोमती महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ स्कूली बच्चों की गोमती पर आधारित प्रतियोगिताएं कराई गई और ब्रज की रासलीला मंडली द्वारा सुंदर लीला मंचन किया गया। सभी प्रतिभागियों को मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्रा और SDM परमेश कुमार ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर गोमती नदी को सजाने संवारने और स्वच्छ रखने के लिए सभी 16 घाटों पर 10-10 गोमती मित्रों की तैनाती युवा कल्याण विभाग द्वारा करने की घोषणा की गई। अब तक घोषित किए गए 82 गोमती मित्रों को परिचय पत्र वितरित किए गए। पीलीभीत जिले में गन्ने की फसल के सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक 2 लाख किसानों के खेतों तक गन्ना विकास विभाग की टीमें पहुँच चुकी है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया कि गन्ने के साथ गेंदे की मिलवा खेती करके किसान मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। पीलीभीत जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गांधी स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार शामिल हुए। गांव से शहर तक स्कूल कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मानसून सीजन के चलते 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या और आमदनी पर संतोष व्यक्त किया।
1: पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र इस बार काफी अच्छा गया है। जहां तक हम लोग बात करते हैं राजस्व की, राजस्व हमारा जो है पिछले साल तुलना में करीब 5 लाख रुपए अभी तक बढ़ चुका है। साथ ही साथ इस बार जो विशेषता रही है पर्यटन सत्र की, उसमें खास बात रही है कि जो टाइगर के बच्चे हैं वो काफी अच्छी संख्या में दिखे हैं और काफी जगहों पे दिखे हैं। करीब 4 बाघिन ऐसी रही हैं जिनके बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के दिखे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पर्यटन सत्र पर्यटकों की संख्या के लिहाज से और जो है साइटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा गया है।
0: उन्होंने कहा इस बार बाघ और अन्य वन्य जीवों की अच्छी साइटिंग होने से सैलानी काफी प्रभावित हुए।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं भी अब देशगान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 9:30 होने वाले ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। तो बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका सामीन खैर मकदम है। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से आयशा राहत का सलाम अदब कबूल कीजिए। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये अदबी प्रोग्राम जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर हाजिर होते हैं जो न सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करते हैं बल्कि हमारे ज़ौक़ो शौक़ की तस्कीन भी होते हैं। जी हाँ सामीन, क्योंकि सामीन नज़्म हो या फिर नसर हो, दोनों का ताल्लुक हमारे दिली जज्बात से है, कैफियात से है और उन बातों से है जो अदब के जरिए ही नुमाया होते हैं। तो सामीन, ऐसी ही एक शेरी नशिस्त का एहतमाम आज हमने अपने स्टूडियो में किया है जिसमें हमारे मुअज्जिज मेहमानान हमारे दावतनामे पे यहाँ पर शिरकत फरमा रहे हैं। तो आइए उनसे सबसे पहले तारुफ करा दूँ। हमारे दरमियान हैं डॉक्टर जाहिद अली दानिश, जनाब मोहम्मद इरफान इरफान सागर, जनाब अहदुल्ला खां अजन नुमानी, डॉक्टर जावेदुल्ला खां जावेद नसीमी। आप सभी मेहमानान का हमारे स्टूडियो में समीमे कल्ब से खैर मकदम है। समीन, सबसे पहले मैं के लिए आगे बुलाऊंगी जाहिद अली साहब को। उनके इस शेर से लब पे तारों की फकत बात ना आई तेरी, दास्तां लालो गुल ने भी सुनाई तेरी।
2: चार मिसरे समाप्त फरमाएं।
3: जी सर।
2: अर्ज किया है कि मोहब्बतों का यूं ही एतराफ रहने दो।
3: मोहब्बतों का यूं ही एतराफ,
2: मोहब्बतों का यूं ही एतराफ रहने दो, जमाना रहता है तुमसे खिलाफ रहने दो।
3: वाह।
2: जमाना रहता है तुमसे खिलाफ रहने दो, और इलाज मरहमे उल्फत है मेरे जख्मों का, इलाज मरहमे उल्फत है मेरे जख्मों का, नहीं है हाजत निश्तर शिगाफ रहने दो।
3: अच्छा है, बहुत उम्दा, वाह,
2: शुक्रिया नवाजिश। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ कि हसद की आग लगी है जनाब अपनों में,
3: हसद की आग लगी है जनाब अपनों में,
2: हसद की आग
3: लगी है
2: जनाब, लगी है जनाब अपनों में, यही तो बात है सबसे खराब अपनों में।
3: वाह।
2: और मेरे भी हाथ में कासा था कुछ सवालों का,
3: मेरे भी हाथ में कासा था कुछ सवालों का,
2: मिलाना एक भी मुझको जवाब अपनों में।
3: वाह वाह वाह,
2: शुक्रिया नवाजिश। अर्ज किया है कि बड़े सलीके से मिलते हैं मतलबी इंसान,
3: बड़े सलीके से मिलते हैं मतलबी इंसान,
2: बड़े सलीके से मिलते हैं मतलबी इंसान, अगर है कोई भी इज्जत मुआब अपनों में, अगर है कोई भी इज्जत मुआब अपनों में। अर्ज किया है कि न भाई भाई को समझे न बहन को।

0: कोई,
1: न भाई भाई को
0: न भाई भाई को
1: कोई।
0: समझे न बहन को कोई। बड़ा अजीब है अब इज्तिनाब अपनों
1: अपनों
0: में,
1: में। अच्छा
0: बड़ा
1: वाह,
0: अजीब है अब इज्तिनाब अपनों में।
1: हरेक अपने पराए की
0: हर
1: मर गई
0: एक
1: गैरत।
0: अपने पराए की मर गई गैरत। नहीं है कोई भी पर्दा हिजाब अपनों में,
1: वाह वाह,
0: नहीं
1: बहुत
0: है
1: सुंदर,
0: कोई भी पर्दा हिजाब अपनों में।
1: वाह
0: अर्ज किया है कि बड़े ही प्यार से तलकीन कीजिए साहब,
1: बड़े ही प्यार से
0: बड़े
1: तल।
0: ही प्यार से तलकीन कीजिए साहब। किसी को पीते जो देखो शराब
1: वाह
0: अपनों
1: अच्छा
0: में।
1: है, वाह अच्छा है,
0: शुक्रिया नवाजिश करम।
1: वाह
0: उस शेर अर्ज करता हूँ कि तलब किया नहीं मैंने कभी भी अपनों से,
1: हाँ, तलब किया नहीं मैंने कभी
0: तलब
1: भी
0: किया
1: अपनों।
0: नहीं मैंने कभी भी अपनों से। बस इतनी बात पे है इस्तेराब, और तुम अपने आप को गुमराह मत करो दानिश।
1: तुम अपने आप को गुमराह मत करो,
0: तुम अपने आप को गुमराह मत करो दानिश। कमी बड़ी को संभालो जनाब अपनों में।
1: वाह
0: हसद की आग लगी है जनाब अपनों में।
1: वाह, बहुत उम्र।
0: गजल का मतला हाजिर करता हूँ।
1: इरशाद,
0: कहे कि बड़े पुरकैफ मंजर देखता है,
1: बड़े पुरकैफ मंजर देखता है,
0: बड़े पुरकैफ मंजर देखता है। खला में जो भी उड़कर देखता है,
1: वाह,
0: और वही सहरा के बंजर देखता है,
1: वही सहरा के बंजर
0: वही
1: देखता है,
0: सहरा के बंजर देखता है। जो आंखों से समंदर देखता है,
1: वाह
0: जो आंखों
1: वाह,
0: से समंदर देखता है। अर्ज किया है कि इस अहदे नौ में खुशहाली के मंजर, इस अहदे नौ में
1: खुशहाली में,
0: खुशहाली के मंजर। मुकद्दर का सिकंदर देखता है।
1: वाह।
0: अर्ज किया है कि मेरी बर्बादियों के बाद में भी,
1: मेरी बर्बादियों के बाद में भी,
0: मेरी बर्बादियों के बाद में भी मेरा कासा तवंगर देखता
1: वाह
0: है।
1: वाह,
0: अर्ज किया है कि उदासी के हिसारों से बचे तो,
1: हाँ उदासी के हिसारों से बचे तो,
0: उदासी के हिसारों से बचे तो जुनूने शौक पत्थर देखता है।
1: वाह वाह,
0: उदासी के हिसारों से बचे तो जुनूने शौक पत्थर देखता है। अर्ज किया है कि उधर बच्चा, तवज्जो चाहूंगा
1: जी जी
0: कि
1: अता कीजिए।
0: उधर बच्चा इधर मुफलिस का दिल,
1: हाँ उधर बच्चा इधर मुफलिस का दिल,
0: उधर बच्चा इधर मुफलिस का दिल। खिलौना जब मचल कर देखता है,
1: वाह बहुत
0: खिलौना
1: अच्छा,
0: जब मचल कर देखता है। और मकता देख लें हुजूर के वही इंसान फकत इंसान है दानिश,
1: हाँ वही इंसान फकत
0: वही
1: इंसान है
0: इंसान
1: दानिश,
0: फकत इंसान है दानिश। तासुब से जो हटकर देखता है,
1: वाह
0: बड़े पुरकैफ मंजर देखता है। खला में जो भी उड़कर
1: बहुत
0: देखता
1: उम्र।
0: है।
2: ये थे डॉक्टर जाहिद अली दानिश। अब इसके बाद मैं रुजू करूंगी एक और मोतबर शायर मोहम्मद इरफान सागर साहब के हुजूर कि वो अपने कलाम से सामेईन को महसूस करें।
3: गजल का मतला और एक शेर समाप्त करें।
4: चेहरा चेहरा प्यास के कितने लश्कर थे, हमसे पूछो कैसे कैसे मंजर थे। चेहरा चेहरा प्यास के कितने लश्कर थे, हमसे पूछो कैसे कैसे मंजर थे। और दामन तेरी याद से इतना भीगा है, कब्ल तेरी चाहत से हम तो बेहतर थे। दामन तेरी याद से इतना भीगा है, कब्ल तेरी चाहत से हम तो बेहतर थे। कि गमे दुनिया की चाहत हो गई है, गमे दुनिया की चाहत हो गई है, हकीकत में मुसीबत हो गई है, हकीकत में मुसीबत हो गई है। और चलो तारीकियों का जिक्र कर लें, उजालों से तो नफरत हो गई है। चलो तारीकियों का जिक्र कर लें, उजालों से तो नफरत हो गई है, उजालों से तो नफरत हो गई है। और तुम्हारी सादगी से खा के धोखा, तुम्हारी सादगी से खा के धोखा, मेरी आंखों को हैरत हो गई है। तुम्हारी सादगी से खा के धोखा, मेरी आंखों को हैरत हो गई। और एक मतलब और एक शेर, उसके बाद चंद अशआर। और मसालेहत का अगर रास्ता नहीं होता, मसालेहत का अगर रास्ता नहीं होता, यकवीनी तौर पर खुद में बिखर गया, यकवीनी तौर पर खुद में बिखर गया हो। मतलब और एक शेर और समाप्त कर लें, तवील बहर है। कि कहीं पे चेहरे उदास हैं तो कहीं पे मंजर बदल रहे हैं, कहीं पे चेहरे उदास हैं तो कहीं पे मंजर बदल रहे हैं। निजामे दुनिया से मुस्तरिब हूँ,

0: खुशी के लश्कर बदल रहे हैं और मुखालिफत में हवाएं चलकर
1: बुझा रही हैं
0: चरागे उल्फत, यकी है मुझको ये सारे तेवर किसी की शह पर बंद। और ये गजल के चार पांच के नए मिजाज के मंजर जरा सजाने दो, के नए मिजाज के मंजर जरा सजाने दो, जो गुजरा वक्त है उसको मुझे भुलाने दो। और तमाम शब मेरे दामन पे उसकी यादें थीं, और तमाम शब मेरे दामन पे उसकी यादें थीं, बिखर गए हैं उजाले तो मुस्कुराने दो। और गमे हयात की मंजिल पे गर ठहर जाऊं, और गमे हयात की मंजिल पे गर ठहर जाऊं, उदासियों को मेरी फिर नए फसाने दो। और अभी मैं कैसे उसे बेवफा समझ बैठूं, और अभी मैं कैसे उसे बेवफा समझ बैठूं, वो मेरा है या नहीं उसको आजमाने दो। और शेर आखिर, अंधेरी शब के सफर में अब उसकी यादों के चराग बुझने लगे हैं जरा जलाने दो। अंधेरी शब के सफर में अब उसकी यादों के चराग बुझने लगे हैं जरा जलाने दो। और एक मतलब और एक शेर और समाप्त कर लीजिए कि मेरी खातिर खुद को तन्हा मत करना, कि मेरी खातिर खुद को तन्हा मत करना, अपना दामन गम का दरिया मत करना। मेरी खातिर खुद को तन्हा मत करना, अपना दामन गम का दरिया मत करना। और मेरे सफर में धूप के लश्कर रहते हैं, अपनी घनेरी धूप का साया मत करना।
2: समीन अभी आप समाप्त फरमा रहे थे इरफान सागर, मोहम्मद इरफान साहब से उनका कलाम। और अब इसके आगे एक और मुतबर शायर हमारे दरमियान हैं, वो हैं जनाब अहद उल्ला खां आज़र नुमानी। उनसे मैं पुरखुलूस इल्तिमास करूंगी कि वो अपने कलाम से सामेईन को माजूस करें।
3: गजल से पहले एक मतलब एक शेर अर्ज करता हूं कि उम्र भर आंखों में मंजर कोई रहता कब है, उम्र भर आंखों में मंजर कोई रहता कब है, खुश्क हो जाए जो दरिया तो वो बहता कब है।
2: वाह क्या कहने हैं।
3: खुश्क हो जाए जो दरिया तो वो बहता कब है, अर्ज करता हूँ कि ये हकीकत है कि दुनिया है सराय फानी, ये हकीकत है कि दुनिया है सराय फानी, देर तक कोई भी इंसान यहाँ रहता कब है, देर तक
2: अच्छा
3: कोई भी इंसान यहाँ रहता कब है। बहुत शुक्रिया। समाप्त फरमाइए चार मिसरे और अर्ज करता हूँ कि फिर इसके बाद सफर में ही जिंदगी गुजरी, फिर इसके बाद सफर में ही जिंदगी गुजरी, वहाँ उतर न सके हम जहाँ किनारा था, वहाँ उतर न सके हम जहाँ किनारा था, वो जिंदगी भी मेरा साथ कब तलक देती, वो जिंदगी भी मेरा साथ कब तलक देती, बड़े सलीके से मैंने जिसे संवारा था।
2: बहुत उम्दा।
3: बड़े चार में से और समाज फरमा लें, उसके बाद एक गजल पेश करूँगा। अर्ज करता हूँ कि बाग से गुलिस्तान से खुशबुओं से फूलों से, बाग से गुलिस्तान से खुशबुओं से फूलों से, आज भी मोहब्बत है सावनों के झूलों से, आज भी मोहब्बत है सावनों के झूलों से। शेर समाज फरमाइए कि आईनों को फिर कैसे रख सकोगे तुम महफूज, आईनों को फिर कैसे रख सकोगे तुम महफूज, दोस्ती जो रखोगे आंधियों से धूलों से। गजल पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए। अर्ज करता हूँ मतलब कि मोहब्बतों के ये रिश्ते बड़े गनीमत हैं, मोहब्बतों के ये रिश्ते बड़े गनीमत हैं, मेरे बुजुर्गों के साए बड़े गनीमत हैं, मेरे बुजुर्गों के साए बड़े गनीमत हैं। अर्ज करता हूँ कि मोहब्बतें यहाँ मिलती हैं और खुशियाँ भी, मोहब्बतें यहाँ मिलती हैं और खुशियाँ भी, चले भी आओ ये रास्ते बड़े गनीमत हैं, चले भी आओ ये रास्ते बड़े गनीमत हैं। ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, समाज फरमाइए, कि खुद अपने आप से मिलने का वक्त जब न मिले, खुद अपने आप से मिलने का वक्त जब न मिले, तो फुर्सतों के ये लम्हे बड़े गनीमत हैं, तो फुर्सतों के ये लम्हे बड़े गनीमत हैं। और इसे भी समाज फरमा लीजिए कि कठिन हो राह सफ़र और मुश्किलें हो तो फिर, कठिन हो राह सफ़र और मुश्किलें हो तो फिर, हंसी मजाक लतीफे बड़े गनीमत, कठिन और मुश्किलें हो तो फिर, हंसी बहुत शुक्रिया, हंसी मजाक लतीफे बड़े गनीमत हैं। समाज फरमाइए बिल्कुल घर का शेर के, मैं इनको देख के जीता हूँ और खुश भी हूँ, मैं इनको देख के जीता हूँ और खुश भी हूँ, ये मेरे बच्चों के बच्चे बड़े गनीमत हैं, मैं इनको देख के जीता हूँ और खुश भी हूँ।

0: ये मेरे बच्चों के बच्चे बड़े गनीमत हैं, मक्ता हाजिर कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ हूँ आज़र, चलो दवा खा लो। तुम्हारे साथ हूँ आज़र, चलो दवा खा लो। रिफाकतों के ये जुमले बड़े गनीमत हैं, रिफाकतों के ये जुमले बड़े गनीमत हैं। बहुत शुक्रिया।
1: बहुत खूबसूरत अंदाज में अभी हमारे दरमियान थे अहदुल्ला खां, आज़र नुमानी साहब, और इस महफिल की आखिरी शम्मा जो हमारे दरमियान हैं वो हैं डॉक्टर जावेदुल्ला खां जावेद नसीमी साहब। मैं उनसे बहुत पुरखलूस गुजारिश करूंगी कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें।
2: गजल का मतलब समाज फरमाए, अर्ज करता हूँ कि किसी का अक्स उभरता हुआ नजर आए,
3: किसी का
2: अक्स उभरता हुआ नजर आए, गजल हो ऐसी वो हंसता हुआ नजर आए, गजल हो ऐसी वो हंसता हुआ नजर आए। न जाने बिगड़ेगा फिर आज किसका मुस्तकबिल, न जाने बिगड़ेगा फिर आज किसका मुस्तकबिल, वो आज फिर से समरता हुआ नजर आए।
1: बहुत अच्छा है।
2: समरता हुआ नजर आए, न जाने बिगड़ेगा फिर आज।

0: लड़ता हुआ नजर आए, गजल हो ऐसी वो हंसता हुआ नजर आए, गजल हो ऐसी वो हंसता हुआ नजर आए। न जाने बिगड़ेगा फिर आज किसका मुस्तकबिल, न जाने बिगड़ेगा फिर आज किसका मुस्तकबिल, वो आज फिर से समरता हुआ नजर आए।
1: बहुत अच्छा
0: है। समरता हुआ नजर आए। न जाने बिगड़ेगा फिर आज किसका मुस्तकबिल, न जाने बिगड़ेगा फिर आज किसका मुस्तकबिल, वो आज फिर से समरता हुआ नजर आए। है उसकी बात अलग सादगी में भी उसकी, है उसकी बात अलग सादगी में भी उसकी, गुरूर हुस्न झलकता हुआ नजर आए, हुस्न झलकता हुआ नजर आए। और शेर देखें कि कभी तो पार करे वो भी लक्ष्मण रेखा, कभी तो पार करे वो भी लक्ष्मण रेखा, हिसारे जात बिखरता हुआ नजर आए। और ये शेर देखें खास तौर पे कि ये क्या कि हिजर के सदमे उठाऊं मैं तन्हा,
2: ये क्या
0: कि हिजर के सदमे उठाऊं मैं तन्हा, कभी तो वो भी तड़पता हुआ नजर आए, कभी तो वो भी तड़पता हुआ नजर आए। शेर देखें कि नहीं है मुझ पे किसी पर तो हो करम उसका, नहीं है मुझ पे किसी पर तो हो करम उसका, कहीं तो अब्र बरसता हुआ नजर आए। किसी दरीचे से फूटे तो रोशनी की किरण, किसी दरीचे से फूटे तो रोशनी की किरण, कहीं तो चांद निकलता हुआ नजर आए।
1: क्या कहने हैं,
0: कहीं तो चांद निकलता हुआ नजर आए। आखिरी शेर इस गजल का समाप्त फरमाए, कोई तो सर फिरी आंधी का रास्ता रोके, कोई तो सर फिरी आंधी का रास्ता रोके, कोई चिराग तो जलता हुआ नजर आए, कोई चिराग तो जलता हुआ नजर आए। और दूसरी गजल के चंचल समाज फरमाए, अर्ज करता हूँ कि छुप छुप के आंसुओं को पिया तो पता चला, छुप छुप के आंसुओं को पिया तो पता चला, दो दिन मजदूर उससे रहा तो पता चला। हो जाता है अकेला कोई कैसे भीड़ में, हो जाता है अकेला कोई कैसे भीड़ में, हाथों से एक हाथ छुटा तो पता चला, हाथ छुटा
3: अच्छा
0: तो पता चला।
3: अच्छा,
0: और किस दर्जा एहतियात है उसके मिजाज में, किस दर्जा एहतियात है उसके मिजाज में, कुछ दूर तक वो साथ चला। और हमको खबर ही कब थी, ये रुख देखें शेर का, कि हमको खबर ही कब थी वो है इन दिनों उदास, वो शख्स आज हंस के मिला तो पता चला। और ये शेर खास तौर पे मुझे पसंद है, समाज फरमा लें कि एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया, एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया, उतरा मोहब्बतों का नशा तो पता चला, उसे एक सफेद साय की कितनी थी बरकतें, उसे एक सफेद साय की कितनी थी बरकतें, सर पर न जब वो साया रहा तो पता चला, उसे एक सफेद साय की कितनी थी बरकतें, सर पर न जब वो साया रहा तो पता चला। किस दर्जा सर्द होते हैं शोला मिजाज लोग, किस दर्जा सर्द होते हैं शोला मिजाज लोग, मैंने जब आज उसको छुआ तो पता चला, है कितनी तेज धूप पता था कहाँ हमें, है कितनी तेज धूप पता था कहाँ हमें, सर से वो साहिबान हटा तो पता चला। दो तीन चार और सुन ले, कि जो रोज की है बात वही बात करो, जो रोज की है बात वही बात करो, बेकार ही यारों का में हालात करो, जो रोज की है बात वही बात करो, बेकार ही यारों का में हालात करो। और एक मुझसे ही मिलने को तुम्हें वक्त नहीं है, एक मुझसे ही मिलने को तुम्हें वक्त नहीं है, औरों पे तो तुम खूब इनायत करो, एक तुम्हें वक्त नहीं है, औरों पे तो तुम खूब इनायत करो। और ये तर्ज तकल्लुम तुम्हें आया है कहाँ से, ये तर्ज तकल्लुम तुम्हें आया है कहाँ से, होठों से जो फूलों की ये बरसात करो हो। और क्यों चांद से चेहरे पे गिरा रखी हैं जुल्फें, क्यों चांद से चेहरे पे गिरा रखी हैं जुल्फें, क्यों दिन को अमावस की सियाह रात करो हो,
3: बहुत अच्छा है,
0: क्यों दिन को आदाब, क्यों दिन को अमावस की सियाह रात करो। मक्ता समाज फरमा ले के बेवहमो गुमा राह में मिल जाते हो जावेद, बेवहमो गुमा राह में मिल जाते हो जावेद, दानिस्ता कहाँ मुझसे मुलाकात करो हो, दानिस्ता कहाँ मुझसे मुलाकात करो हो, जो रोज की है बात वही बात करो हो, बेकार ही यारों गमे हालात करो।
1: एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया, एक शख्स की तलब में है किस किस को खो दिया, उतरा मोहब्बतों का नशा तो पता चला। ऐसे ही खूबसूरत अशार के साथ हमारे दरमियान थे अभी जावेदुल्ला खान।

0: जावेद नसीमी साहब। और समीन, इसके बाद अब ये नशिस्त अब अपने इख्तिताम को पहुंचती है। जाने से कबल आपको बता दें, उन हजरात उन शोराए किराम के अस्माए ग्रामी जो इसमें शिरकत फरमा रहे थे, वो थे डॉक्टर जाहिद अली, जाहिद दानिश, जनाब मोहम्मद इरफान, इरफान सागर, जनाब अहदुल्ला खां, आजर नुमानी, और डॉक्टर जावेदुल्ला खां, जावेद नसीमी। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से अब अपनी मेजबान आयशा राहत को दीजिए इजाजत।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया जा रहा था।
2: हम आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।
3: भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
3: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
3: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए 870-001-4242।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242।
2: संदेश के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी की प्रयागराज केंद्र में। और दोस्तों, अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको बनवारी लाल शर्मा के स्वर में गए गजलों को सुनवाएंगे। तो लीजिए सुनिए बनवारी लाल शर्मा के स्वर में गई ये गजल।

अगर ये ज़िद है कि उनसे दुआ सलाम ना हो। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बनवारी लाल शर्मा के स्वर में गई ये गज़ल। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

0: सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इससे के अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं

0: को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। दो घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 10:05 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लेकिन फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाने से पहले हम आपको दे देते हैं एक आवश्यक सूचना। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में, यानी कि आज हमारा विषय है हमारा भोजन और पोषण, और इस विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक पूछ सकते हैं, और फ़ोन नंबर नोट कीजिए। फ़ोन नंबर है 0532297042। एक और नंबर नोट कीजिए 0532242346 49, और इस फ़ोन नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपने प्रश्न पूछिए। आपके प्रश्नों का जवाब देंगी हमारी डाइटिशियन अपर्णा सक्सेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए श्रोताओं, और इस पर आप व्हाट्सएप करके भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। सूचना समाप्त हुई। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सीने में धड़कता हुआ एक छोटा सा दिल है, दिल कुछ कहना चाहता है आप सबसे। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हम लेकर आए हैं अनुपमा फिल्म से, और इस गीत को अपनी स्वर से सजाया है लता मंगेशकर ने। कैफी आजमी जी की रचना है और इस गीत को संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार जी ने। अच्छा, कैफी आजमी जी की रचना कितनी खूबसूरत होती है दोस्तों। लीजिए सुनिए इस गीत में।

कुछ भी नहीं। कैफ़ी आज़मी जी की रचना में एक ख़ासियत होती थी कि ये प्रकृति से बहुत जुड़े हुए होते थे।

मतलब दिल ने कहा भी और कुछ सुना भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं। दिल की नज़र भी होती है, वो अपनी मोहब्बत को पहचान ही लेता है। चलिए सुनवाते हैं हम आपको अनारी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश जी की खूबसूरत सी आवाज़ में। और इस गीत की रचना की है शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत है।

नज़र से अगर देखे तो हर रिश्ता बहुत खूबसूरत है, और जब दो लोग मोहब्बत में जुड़ते हैं तो पूरी कायनात ही खूबसूरत लगने लगती है। जैसे कि अभी हमने आपको इस तेज़ धूप में चांद के बात देखी इस गीत में, तो भाई चांद की जब बात हुई तो शीतलता अपने आप मन में छा गई है ना दोस्तों, हालांकि बाहर बहुत तीखी धूप है। और दिल कहता है जब जुड़ता है कि जो है जिसे हम मोहब्बत कर रहे हैं वो बस सामने ही रहे, कहीं जाए नहीं, क्योंकि उसके बिना तो दिल लगता ही नहीं है कहीं। लीजिए सुनिए बागी फिल्म का गीत अंकित तिवारी और श्रुति पाठक के स्वर में ये गीत सजा हुआ है। कुमार ने इस गीत की रचना की है और गौरव रोशन ने संगीत दिया है, और ये गीत चला आपकी रेडियो सेट पर। देखिए क्या कह रहा है ये गीत।

दिल तो हमारा भी नहीं लगता है श्रोताओं आपके बिना। भाई जब दिल ने ये कह ही दिया कि आपके बिना दिल नहीं लगता तो दिल तो मदहोश हो ही जाएगा। लीजिए सुनिए बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का गीत, और इस गीत को अपनी खूबसूरत सी आवाज़ से सजाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जी ने। श्रवण राजू ने रचना की है और ओपी नैयर जी का संगीत है। तो मदहोश हो गया है ये दिल ये सुनकर कि दिल इसके बिना बिल्कुल नहीं लगता।

दीवाना तो हो गया ये दिल। श्रोताओं लीजिए सुनिए अब बरसात फिल्म का गीत, बरसात की रात फिल्म का गीत, क्षमा कीजिएगा। और इस गीत को अपनी आवाज़ों से सजाया है कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़, अलका याग्निक और रचना है आनंद बख्शी की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है और आपको बताऊं ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत, दिल का हुक्म सुन लिया कि आपके दिल के करीब रहना है।

विद्या भी नहीं चमकी और पायल भी नहीं खनके, फिर भी ये दिल की आवाज़ है जो दिल ने सुन लिया। इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए लोकगीत कार्यक्रम। लोकगीत के कार्यक्रम में आज आप अजुक नारायण और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत सुनेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं अजुक नारायण और साथियों के स्वर में गाया ये देवी गीत।

अजुग नारायण और साथियों के स्वर में लीजिए सुनिए गाया ये निर्गुण गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोकगीत का कार्यक्रम और आज के कलाकार हैं अजुग नारायण और साथी। अजुग नारायण और साथियों के स्वर में लीजिए सुनिए पूर्वी गीत।
1: झुरी झुरी बरसे नारे नयनवा की झुरी झुरी।

अजुक नारायण और साथियों के स्वर में लीजिए सुनिए गाया ये खेमटा गीत।

श्रोताओं, अभी आप लोकगीत के कार्यक्रम में अजूक नारायण और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत का आनंद ले रहे थे। इसी के साथ लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: झिलमिल सितारों से बच्चों।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 11 बजने वाले हैं। हमारे अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और बने रहिए अपने रेडियो सेट के करीब।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं संगीतकार कल्याण जी। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहा है आपका रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर। प्रस्तुति दीपक राय की है। संगीतकार कल्याण जी, जिनका पूरा नाम था कल्याण जी वीर शाह, वीर शाह इनके पिता का नाम था। आपका जन्म 30 जून 1928 को कच्छ, वर्तमान गुजरात जिले के कुंदरोडी गांव में हुआ था। बाद में इनके पिता गिरगांव मुंबई में बस गए और वहीं पर किराने की दुकान चलाते थे। 4 दशकों में 250 फिल्मों में आपने संगीत दिया। आपके छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर इस संगीत जोड़ी ने जो संघर्ष किया और फिल्म जगत के संगीत इतिहास में अपना मुकाम तय किया, वो वास्तव में एक संघर्षशील व्यक्तित्व के चरम तक पहुंचने की ऐसी गाथा है जो लोगों को प्रेरित करती है।

आपको इलेक्ट्रॉनिक संगीत सिम्फनी के शुरुआती प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है और इसका सफल प्रयोग आपने किया था नागिन धुन में।

इस संगीत जोड़ी ने एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बनाया। शुरुआत यहीं से हुई। फिल्मों में आगमन तो बाद में हुआ, लेकिन आगमन भी ऐसा जिसने इतिहास रच दिया। अपने समय के दिग्गज संगीतकारों में स्थान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो, सफलता जरूर मिलती है।

आसपास चुनौतियाँ कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, इरादे मजबूत हों तो मंजिल ज़रूर मिलती है। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त थी जो 1958 में रिलीज हुई थी। 1968 में फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो शुरुआत कर रहे हैं उसी फिल्म के गीत से, फूल तुम्हें भेजा है खत में। खतों में फूल तो क्या भेजे जाएंगे, संवेदनाएं होंगी, मन की अभिलाषा होगी, एक ऐसा संदेश होगा जो फूलों से ज़्यादा सुवासित होगा, महकेगा, प्रेम को अमर कर देगा।

1975 में कूड़ा कागज़ के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का पुरस्कार आपके नाम रहा। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको इसी फिल्म से सुनवा रहे हैं।

ये वो दौर था जब लोग सीधे साधे थे, दिल में प्रेम था, रूठते थे तो आंगिक संचालन, जिसे आप कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से आभास करा देते थे। ये वो दौर नहीं था जब इंसान दिखता कुछ था, करता कुछ था, चेहरे पे कुछ था, मन में कुछ था, बहुत सीधे साधे लोग हुआ करते थे। कहते हैं ना कि प्रेम को कभी पराजित नहीं किया जा सकता, नफरत और प्रेम के युद्ध में हमेशा प्रेम की विजय होती आई है। अगला गीत हमने लिया है जॉनी मेरा नाम से, कुछ इसी संदेश के साथ। नफरत

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

1973 में फिल्म आई थी ब्लैकमेल। इसका एक गीत पल पल दिल के पास तुम रहती हो, एक गीत नहीं था बल्कि एक प्रेमी के दिल की आवाज़ थी। और ये तो सच है कि दुनिया का हर इंसान प्रेमी होता है, वो चाहे जितने बहाने बनाए, झूठ बोले, कुछ भी करे। यही वजह थी कि ये गीत उस वक्त का गीत बन गया, उस वक्त के प्रेमियों की आवाज़ बन गई। आइए सुनते हैं इस गीत को।

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के कलाकार हैं संगीतकार कल्याण जी। कहते हैं कि जिंदगी ही एक सफ़र है, एक ऐसा सफ़र जो अनवरत जारी रहता है, सुख में, दुख में, हर्ष में, विषाद में, पीड़ा में, लेकिन एक सच्चा राही वही होता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, सफलता पर इतराता नहीं, अपने कर्तव्य से पलायन नहीं करता, समस्याओं से घबराता नहीं। एक फिल्म थी सफ़र, और इनके संगीत निर्देशन में एक गीत जो उस वक्त उस समय सर चढ़कर बोला था, जो तुमको हो पसंद वही बात करूँगा। सच है, जब प्रेम हो जाता है तो पसंद नापसंद महबूब की बन जाती है, यानी जो चीज़ महबूब को पसंद है वो ख़ुद को पसंद होती है, जो उसको पसंद नहीं है वो ख़ुद को पसंद नहीं होती। इन्हीं मनोभावों को लेकर के जो गीत जिसका निर्देशन इन्होंने किया, हम आपको सुनवा रहे हैं सफ़र फिल्म से।

भारतीय संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 250 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है आपने। बड़ा मुश्किल होता है कुछ गानों का चयन करना, लेकिन कार्यक्रम के अंत में एक ऐसा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जो आप सब भी गुनगुनाते होंगे, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, मुकद्दर का सिकंदर। और यही इस कार्यक्रम का अंतिम गीत है और संदेश भी।

24 अगस्त 2000 को कल्याण जी आनंद जी ने इस जीवन को अलविदा कह दिया। आनंद जी तो उनके भाई थे, ये एक ऐसी जोड़ी थी, दो भाइयों की जोड़ी जिसने फिल्म संगीत जगत पे राज किया।

एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको कल्याण जी आनंद जी के जीवन और उनके कुछ गीत सुनवाए, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं सरस्वती चंद्र, कोरा कागज, जानी मेरा नाम, ब्लैकमेल, सफ़र और मुकद्दर का सिकंदर। अब इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की अपने रेडियो दोस्त डॉक्टर कुंवर तौकीर को दीजिए इजाज़त। प्रस्तुति दीपक राय की थी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। गीत फिल्म से महेंद्र कपूर और लता जी की मिलीजुली आवाज़ों में। गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है कल्याण जी आनंद जी का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है आज के शहंशाह फिल्म से। अनुराधा पौडवाल की आवाज में रचना इंदिवर की है और संगीत निर्देशन है बप्पी लहरी का।

आकाशवाणी प्रयागराज से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल और कमल गांजावाला की मिलीजुली आवाज़ों में, रचना समीर की है, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का। फिल्म का नाम है एंटोनी कौन है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप आकाशवाणी प्रयागराज से सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत 1942 और लव स्टोरी फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और तर्ज बनाई है RD बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं बरसात की रात फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी मन्ना डे और साथियों की मिली जुली आवाज़ में। रचना साहिर की है और संगीत निर्देशन है रोशन का।

0: श्रोताओं, हमें खेद है कि समयाभाव के कारण ये कव्वाली हम आपको पूरी नहीं सुना सके। अब इस कव्वाली के साथ ही फिल्म संगीत का यह प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, FM 100.3 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, बने रहें हमारे साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

एक सूचना सुनिए। दिनांक 30 जून 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में हमारा भोजन और पोषण विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी डायटिशियन अपर्णा सेन। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 2970462 और 2423649 पर पूछ सकते हैं। प्रयागराज का स्टूडियो कोड है 0532। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लें 2970462 और 2423649। प्रयागराज का स्टूडियो कोड 0532। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 800492625 पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फिर से 8004926250। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। श्रोताओं, आपको अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दें। ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य ओवल लंदन इंग्लैंड में खेले जाने वाले ICC महिला T20 क्रिकेट के प्रथम सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 226 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 6:30 से। युवाणी कार्यक्रम होगा रोज की तरह 5:15 से। आज के प्रीड़ापुंज दादा भाई नौरोजी। कुंवर सिंह और साथियों गाए लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 5:00 से। सायंकालीन सभा के आरंभ में धरती के गीत कार्यक्रम में NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित होगा 2:30 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम पनघट प्रसारित होगा 1:15 पर। हेलो पनघट में ड्यूटिशियन अपर्णा सेन श्रोताओं की जिज्ञासा का समाधान करेंगे। विषय होगा हमारा भोजन और पोषण। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं 2970462 और 2423649 पर। प्रयागराज का एसटीडी कोड 0532। फोन नंबर एक बार फिर सुन लें 2970462 और 2423649। प्रयागराज का एसटीडी कोड 0532। आप अपने सवाल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं 8004926250 8004926250। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रसारित होगा 2:12 पर। प्रस्तुति मधु कुमार की होगी। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद यानी 12:15 पर भास्कर दास से राग मधुमात सारंग में बांसुरी वादन हम आपको सुनवाएंगे।

अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम एफ 292.4 मीटर यानी 1024 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं भास्कर दास से राग मधुमास सारंग में बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मधुमास सारंग से बांसुरी वादन, क्षमा कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे भास्कर दास से राग मधुमास सारंग में बांसुरी वादन, आपके साथ तबले पर संगत की श्री विनोद कुमार ने। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 17.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर प्रस्तुत है। श्रोताओं की फोन कॉल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति मधु।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मुगराम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम।
0: जी प्रेमचंद जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम है आशिकी।
0: जी
1: राहुल और अनु अग्रवाल की फिल्म है ये। और गाने के बोल हैं, नजर
0: तो आपकी पसंद का आशिकी फिल्म का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: मेरा नाम नितेश आर्या है
0: जी। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है संघर्ष, तो गाने बोले तुम मुझे चाहती हो।
0: अच्छा, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, ये है गाना
1: जी। बहुत जी, अच्छा गाना,
0: बहुत ही अच्छा गाना है। सोनू निगम साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को गाया है
1: जी। बहुत अच्छा गाना जी। ऐसे गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी जी, बहुत अच्छे ऐसी फिल्में थी उस वक्त, बन रही थी
0: जी जी। उस समय प्रीति जिंटा, सनी देओल, अक्षय कुमार, इन सब की फिल्म आती रहती थी। तो चलिए, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं संघर्ष फिल्म का ये गाना।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी,
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से। कैसे मैम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ विकास जी, आप कहाँ पर हैं इस समय?
1: अभी तो हम मैडम जी छत्तीसगढ़ में हैं।
0: अच्छा, छत्तीसगढ़ में है। देखिए श्रोताओं, ये विकास जी हैं और हमारे ऐसे श्रोता हैं कि ट्रक ड्राइवर हैं, जैसा कि इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया, हर जगह देश का भ्रमण करते रहते हैं, किसी भी स्टेट में जाए लेकिन आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम सुनना बिल्कुल नहीं भूलती और वहीं से हमें कॉल भी लगाते हैं।
1: जी मैम, अभी यहीं थे और यहीं से लगा रहे थे, आज इलाहाबाद आ रहे हैं ना।
0: अच्छा अच्छा तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैडम जी, फिल्म का नाम तो अभी याद था, लेकिन वो फिल्म का नाम अभी अभी फोन लगाते लगाते ध्यान से उतर गया है।
0: चलिए बोल बता दीजिए।
1: एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों की राह बताया। असल में ये गाना जो है मैडम जी,
0: हाँ जी,
1: ये आम लोगों के लिए, हम लोग भी एक बंजारा ही जैसे हैं।
0: हाँ हाँ, ये तो बात आपने सही कही, मतलब कहीं एक जगह टिकते नहीं है।
1: जी जी, इसीलिए मोहम्मद रफी साहब ने इसको बड़ी बहुत ही अच्छे अंदाज में इसको बनाया है।
0: जीने की राह फिल्म का ये गाना है।
1: जी जी जी,
0: तो वही विकास जी की इस पसंद को पूरा करते हुए सुनवाते हैं ये गीत, लीजिए सुनिए।
2: नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से हेलो फरमाइश कार्यक्रम और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार जी।
1: मैम रोशनी बोल रहे हैं, गाँव डेरा जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी प्रतापगढ़ से रोशनी जी हमारे साथ हैं। तो रोशनी जी, आपकी पसंद का कौन सा गाना है?
1: मैम फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया और गाने के बोल हैं आजा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई।
0: तो आपकी पसंद का ये गाना लीजिए, सुनिए।

0: Come on.
1: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय चल रहा है हेलो फरमाइश कार्यक्रम और मैं हूँ मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार
2: भैया, मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं
1: जी। राकेश जी बोलिए, कौन सा गीत सुनेंगे?
2: हमको अजय फिल्म में गाना सुना दिए, छम्मक छल्लो जरा धीरे। जी मैडम,
1: तो हम आपकी पसंद का ये गाना सुनवाने जा रहे हैं। राकेश जी लीजिए सुनिए।

अभी श्रोता फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों कार्यक्रम हेलो फरमाइश सुन रहे थे। प्रस्तुति मधु कुमार की थी। अभी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: बेहतरीन इंसान वो है जो समाज को कुछ देता है और अपना सर्वोत्तम देता है। बदले में समाज से कोई अपेक्षा नहीं करता, उसे तो खुद ब खुद जो चाहता है मिलता चला जाता है। यही जीवन का रहस्य है, जिसने जान लिया वो सफल रहा। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। उसके बाद इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी हमारे लखनऊ केंद्र से। बने रहें हमारे साथ और करें थोड़ा सा इंतज़ार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है।

0: है जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the inauguration of

0: जा सकता है, उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उसका मॉडल बन रहा है।
1: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के नजराने में मुबैना बेजाब्तगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 8 अफराद को 14 दिनों के लिए अदालती हिरासत में रखने का हुक्म दिया गया है। केस की समाअत कल अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रजत वर्मा के सामने हुई। तमाम मुलजमीन को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। फिलहाल पुलिस ने मुलजमीन का रिमांड तलब नहीं की है। इस मामले की अगली समाअत 13 जुलाई को होगी। इस दौरान अयोध्या बार एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी वकील इस मामले में नामजद मुलजमीन की नुमाइंदगी नहीं करेगा। दरी असना सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मफाद आम्मा की अर्जी की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें श्रीराम मंदिर भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिलने वाले अतियात में माली बेजाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया गया था। दरख्वास्त में अदालत की निगरानी में होने वाली तहकीकात और माली बेजाब्तगियों के मुकम्मल ऑडिट का मुतालबा किया गया है। जस्टिस एम सुंदरेश और शील नागू की बेंच ने दरख्वास्त की उजलत पर सवाल उठाया और कहा कि गर्मियों की तातीलात के बाद अदालत दोबारा खुलने पर इसे दर्ज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल पीलीभीत में 579 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि हुकूमत ने पीलीभीत समेत रियासत के तमाम अज़ला की तरक्की को तेज़ करने के लिए आलमी मेयार का बुनियादी ढांचा बनाया है। प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर मुमलकत जितिन प्रसाद ने कहा कि रियासती हुकूमत की अवामी बहबूद की पॉलिसियों और गुड गवर्नेंस की वजह से पीलीभीत तब्दील हो रहा है। पीलीभीत के बाद वज़ीर-ए-आला ने भामाशाह की यौम पैदाइश के मौके पर मुरादाबाद में मुनक़द एक प्रोग्राम में 365 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला ने मगरबी उत्तर प्रदेश की पहली डिजिटल जंगी यादगार त्रिशूल इंडियन डिफेंस म्यूज़ियम का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने मुरादाबाद में तरक्याती कामों, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर और महकमा तामीरात आम्मा के एक्शन प्लान के ताल्लुक से एक डिवीज़नल जायजा मीटिंग में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दीं। रियासती हुकूमत ने ई रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल से मुतालिक अपने साबका हुक्म को फौरी असर से मनसूख कर दिया है। स्टैंप और कोर्ट फीस व रजिस्ट्रेशन के वज़ीर ममलकत रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यह फ़ैसला एडवोकेट और डीड राइटर्स की खदशात और मफादात की रोशनी में किया गया है।
2: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जीव जारी किए गए 4/6/2026 को इस जीओ में थोड़ी सी क्रिएटिव न होने के कारण से एक भ्रम किस्ते बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि शायद हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था जीओ उसको हम निरस्त करते हैं।
1: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कल 3 जबानों की पॉलिसी पर रहनुमा खतूत जारी किए। बोर्ड ने कहा कि मौजूदा दर्जा 10 बैच को नई जबान की पॉलिसी पर अमल करने की ज़रूरत नहीं होगी। बोर्ड ने यह भी कहा कि दर्जा 7, 8 और 9 के तलबा को दर्जा 10 तक पहुंचने पर उनकी तीसरी जबान में बोर्ड के इम्तहान देने की ज़रूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि क्लास के लिए मुनासिब वसायल बरवक्त दस्तियाब कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन आज से UPTET 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इम्तिहान 2, 3 और 4 जुलाई को होगा। गुज़िश्ता 36 घंटों में रियासत के कुछ अज़ला में हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई। पीलीभीत ज़िले में कल रात से हो रही बारिश से वहां के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। गोरखपुर समेत कुछ दूसरे अज़ला में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज़ में रियासत में मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। महकमे ने आज रियासत के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण बहनें सुने आज का विशेष हेलो पनघट कार्यक्रम।

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज रामपुर के मिलक और बिलासपुर असेंबली हलकों में 690 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा,
1: विरासत को सम्मान देकर के कैसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए।

0: राम राम वहिनी हरन। और आज आप सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम हेलो पनघट, अपन प्यारी सखी आस्था यादव यानी गंगा के साथ,
1: रीता रानी यानी जमुना के साथ।
0: बिल्कुल, तो देखा आज हम सब ऐसे विषय पे बात करब जो हमारे जिंदगी से हर दिन जुड़ा हुआ, हमारा भोजन और पोषण। देखा हम जोन खाई थे वो हमारे शरीर के ऊर्जा देते हैं, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावत है,
1: बिल्कुल,
0: और हमारे स्वास्थ्य के नींव तैयार करत है। लेकिन देखा आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड, अनियमित खान पान और गलत आदतन के कारण पोषण की कमी एक बड़ी समस्या बनत जात बा। देखा का सिर्फ खाली पेट भरा भी पर्याप्त है? संतुलित आहार का होत है? लड़कन के, सयानन के, बुजुर्गन के लिए भोजन कैसन होए के चाहिए, और हम अपनी रोजमर्रा की थाली के ज़्यादा पौष्टिक कैसे बनाए सके थे?
1: तो देखे यही विषय के गहराई से समझे के लिए आज हमारे साथ एक अनुभवी डाइटिशियन मौजूद हैं। उनसे हम जानब कि संतुलित आहार का है तथा विभिन्न आयु वर्ग के लिए सही भोजन कैसन होए के चाहे और स्वस्थ जीवन शैली अपनावे के लिए कौन कौन बातन का ध्यान रखे के चाहे।
0: बिल्कुल, सबसे पहले अर्पणा सक्सेना जी, आपके बहुत बहुत स्वागत भाई यही कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो मैडम, आपका हमारे पहलो पनघट कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैडम, आज के समय में स्वस्थ जीवन का आधार केवल अच्छा इलाज नहीं बल्कि सही खान पान और संतुलित पोषण भी है। आपका सलाह लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करत है। तो हमारा आपसे ये प्रश्न है कि बहनी, कि मैडम, संतुलित आहार के का कहत हैं?
2: बिल्कुल, 100% आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस समय अगर जो भोजन है हम रोज़ खाते हैं, जिसको हम अगर सही रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और इलाज की ज़रूरत हमें कम पड़ेगी। अब बात आती है संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन ना केवल पोषक तत्वों को संतुलित मात्रा में लेना है बल्कि सही भोजन सही तरीके से पका हुआ, सही समय पे और सही मात्रा में लिया हुआ, उसे कहते हैं। तो खाली सिर्फ ये नहीं है कि हम ये चीज़ खा लेंगे तो वो संतुलित कर देगा।
1: अच्छा,
2: इसको सही समय पे भी खाना है, इसको सही तरीके से बनाना भी है, और हर एक का मात्रा यानी क्वांटिटी जो हर एक बुजुर्ग वर्ग या बच्चे या वयस्क जो भी ले रहे हैं, ये सब अलग अलग तरीके की मात्रा, अलग अलग मात्रा लेंगे।
1: अच्छा,
0: रोज़मर्रा की डाइट पे मैम, एक सामान्य व्यक्ति के दिन भर की थाली कैसन होए के चाहिए?
2: एक सामान्य व्यक्ति के लिए अगर हम आम भाषा में बात करें तो एक थाली का जो 50% है यानी आधी थाली पूरा फल और सब्जियों से भरा होना चाहिए, वह सलाद भी उसी के साथ होना चाहिए। बाकी चीज़ जो आधी थाली बचती है उसमें एक चौथाई भाग में दाल यानी कि प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें, जैसे दाल या दही या आप कोई ऐसी चीज़ लेते हैं मांस या मच्छी, उसको रख सकते हैं। साथ में जो एक चौथाई भाग है उसमें आप रोटी चावल यानी अनाज को जगह दे सकते हैं।
1: अच्छा, तो अच्छा मैम ये बताऊँ कि हमारे शरीर के लिए पोषण का क्या महत्व है?
2: पोषण ही सब कुछ है, क्योंकि पोषण, पोषण के बिना, पोषण के बिना हम अधूरे हैं। पोषण से ही हम ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं कि हम खाना कैसे खाएं, अगर हम उसको सही तरीके से खा रहे हैं तो हमें को बीमारियों से हम खुद को दूर रख सकते हैं, चुस्त दुरुस्त रह सकते हैं और अपने आप को स्फूर्ति से भरा हुआ रख सकते हैं।
0: हेलो,
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रही है? जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ा तेज़ बोलिए प्लीज़।

0: हेलो,
1: आप सुनाई दे रहा है मैम?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज़ अपना नाम बताइए।
1: मैम, मेरा नाम वंदना है जी।
0: जी वंदना जी, आपने फ़ोन किया है हेलो पनघट में। तो हमारे साथ डाइटिशियन अर्पणा सक्सेना जी हैं, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज़।
1: जी नमस्ते डॉक्टर साहब,
2: नमस्कार वंदना जी।
1: मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में हम अपना खान पान कैसा रखें, कैसे व्यवस्थित रखें कि स्वस्थ रहें।
2: बिल्कुल वंदना जी, आपको इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपने आप को नियमित तौर पे बना करके रखना है कि हम थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में कई बार खाएं, और जो हम खा रहे हैं वो घर का साफ़ सुथरा तरीके से पका हुआ ताज़ा भोजन हम लें, और इसके अलावा समुचित हम पानी पिएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारे भोजन में सब चीज़ें समाहित हों, जैसे दाल भी बहुत पौष्टिक है, रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, दही, इन सब को उचित स्थान दें। साथ ही साथ कोशिश करें कि और भी जो अनाज की चीज़ें हैं उन सबको भी हम अपने भोजन में सम्मिलित करें, और कोशिश करें कि हम मैदा या बहुत ज़्यादा चीनी युक्त जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि ये हमें चाहे या हम ना चाहें बीमारी की ओर ले जाएंगी, और अपने आप को थोड़ा सा तनाव रहित रखने की भी कोशिश करें। उससे हम बहुत सी तरह की बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकेंगे।
0: धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अब हम सोच रहे हैं कि एक गीत के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक गीत प्लीज़ श्रोताओं के लिए।

0: उड़ बैठी पनवड़िया तो कनिया आरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे बिजड़े वाली मुनिया के सब रस ले।
1: देखा गीत संगीत तो होते रहे लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं तो चलो उनसे बात किया जाए।
2: हेलो
1: हेलो
3: हेलो मैम नमस्कार।
1: नमस्ते।
2: हाँ भैया आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: राजेन बात कर रहा हूँ, गोतनी कुंडा प्रतापी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है भैया आप जो है मैडम से बात

0: करिए।
1: हाँ
0: हाँ
1: डॉक्टर सर नमस्कार
0: नमस्कार राजन जी, बताइए।
1: जी। डॉक्टर सर तो आप मैं बताने की कृपा ये करें कि हम अपने खान पान का ध्यान कैसे रखें कि हम एकदम फिट रहें, और ज्यादातर ये बताइए कि ऐसे मौसम में जैसे गर्मी है इस तरीके के मौसम में हमें क्या से मतलब क्या खाना चाहिए जो हम एकदम फिट रहें।
0: बिल्कुल राजीन जी, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि इस मौसम में हमारे शरीर से बहुत पानी निकल जाता है, क्योंकि बहुत मौसम में नमी है, तो कोशिश करें कि पानी की कमी ना हो। तो कुछ
1: जी
0: कुछ
1: जी जी
0: अंतराल पे पानी से भरी हुई चीज़ें, जैसे सादा जल भी हो सकता है, और इसके अलावा आप नारियल पानी या फिर सब्जियों के सूप, नींबू पानी, इसको भी सम्मिलित कर सकते हैं, छाछ। और अपने वहाँ बहुत प्रचलित है सत्तू को पानी में घोल के पीना, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है, उसको लें। इसके अलावा कोशिश करें कि शरीर में नमक की कमी ना हो। इसी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करने के लिए ही ये बार बार हमें पानी से अपने इलेक्ट्रोलाइट
1: थोड़ा थोड़ा
0: बैलेंस को मेंटेन।
1: सर मैं एक थोड़ा एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा।
0: जी बताएं।
1: तो नमक का जो आपने बताया, तो नमक का क्या प्रभाव हमारे बॉडी पे पड़ता है जरा आप बताएं, तो हमारे साथ साथ श्रोताओं को भी इसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप
0: जी,
1: नमक का नाम लिया।
0: नमक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस मौसम में, जैसे मैंने बताया, बहुत नमी है, तो शरीर से पानी के साथ नमक भी कम हो जाता है, और ऊर्जा तो कम होती ही है। तो ऊर्जा के लिए तो हम कुछ कुछ खा लेते हैं, लेकिन हम पानी भूल जाते हैं। तो हमें
1: जी
0: उसके
1: जी
0: ज़रिए, उसमें अगर हम नमक डाल करके या नमकीन कोई भी पेय पदार्थ लेंगे हम, तो वो हमारी नमक की कमी पूरी करेगा। उससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, और शरीर से जो भी इवेपोरेट हो रहा है, जो पानी निकल रहा है, उसकी हम भरपाई कर पाएंगे।
1: जी जी जी धन्यवाद मैम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी।
2: हमारी आहार विशेषज्ञ अर्पणा सक्सेना जी ने इतने बढ़िया से राजेंद्र जी के सवालों का जवाब दिया। और मैम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं हम, कि जैसे आजकल जो चल रहा है उसमें ये एक लोग सोचते हैं कि महंगे और विदेशी खाद्य पदार्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाने के लिए।
3: बिल्कुल सही कहो आस्था, कि जौन बा जौन भी सामान रहे वो घर का बना रहे, बाहर का ना रहे। तब मैडम जी बताएं आप।
0: बिल्कुल, ये बात तो शत प्रतिशत सही है कि घर के भोजन की बात ही निराली है, और बाहर का या विदेशी भोजन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम घर में ही सफाई से बनाया हुआ सुपाच्य भोजन और भरपूर पोषण युक्त भोजन बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें बाहर के खाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और महंगे पदार्थों को तो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें जो भी पोषक तत्व चाहिए, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं, जहाँ पर भारत में हमारी जो थाली है वो सब रंगों से भरी हुई है, पूरे पोषकता से भरी हुई है। तो उसको अगर हम लेंगे तो हमारा सारा पोषण का जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी होगी। इसके लिए बाहर के विदेशी खाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
3: अच्छा मैम एक बात और बताऊँ कि जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन भर में का का खाए के चाहे, जैसे कि उनके आवश्यकता की पूर्ति होए, जैसे किशोर हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके पोषण संबंधी आवश्यकताओं में का का अंतर होए के चाहे।
0: देखिए, ये तीनों ही अवस्थाएं अलग अलग हैं। बच्चे, उनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं, ऐसे ही बुज़ुर्ग में भी, बुज़ुर्गों की भी आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं कुछ पोषक तत्वों के मामले में, और वयस्क की एक औसत होती है, क्योंकि बच्चे विकास में उम्र में होते हैं। तो तीनों के लिए ही अलग अलग मात्राएँ चाहिए। बाकी ये है कि सभी को पोषण की ज़रूरत है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हम उनमें डाल सकते हैं, बहुत आप वो ये कर सकते हैं, जैसे तीनों ही उम्र में बच्चे भी थोड़े थोड़े समय के अंतर पे ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं, पानी भी लें, और खाने की हर चीज़ खाने लायक है, और उसकी मात्रा भी बहुत अधिक ना रखें, ताकि उनको कोई भी समस्या ना हो उसको पाचन उसका करने के लिए।
3: देखा आस्था, एक कॉलर अपने साथ फिर जुड़ा है।
2: हाँ तो चलो उनके बाद अपने आहार विशेषज्ञ जी से करावा जाए।
3: पहले
2: हेलो,
3: अपना नाम बताओ।
1: हेलो सर,
2: जी अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम जगदीश।
3: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: जी, आवाज़ आ रही है आपकी।
1: मेरा नाम जगदीश।
2: जी जगदीश जी।
1: हाँ, मुझे भी पता कुछ

0: सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। हेलो,
1: नहीं सर, हेलो। मैं
0: हाँ जी, हाँ जी, बोलिए
1: प्रताप,
0: जी, आप अपना प्रश्न पूछिए हमारी आहार विशेषज्ञ जी से।
1: मैडम मेरा सत्मा भी है। मेरी उम्र 70 साल की है। हाँ,
0: अच्छा, जी, बताइए। 70 साल है आपकी उम्र। जी
1: किस तरह खान पान से संतुष्ट
2: जी मैं जितना समझ पा रही हूँ, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ रही है, कि आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे खाएं। क्या मैं सही पूछ सोच रही हूँ जगदीश जी? जगदीश जी, देखिए, मेरा आपके सवाल का यही जवाब है कि आप खाने में सब कुछ लें, और जैसे बुज़ुर्ग लोग जब हो जाते हैं तो उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि वो दिन में 2 बार खाएं, और वो बहुत बार बार नहीं खा पाते हैं, जिससे कि उनके शरीर में एक तो कमज़ोरी हो जाती है, साथ में कई बारी बहुत सारे पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं, और क्योंकि उनकी उम्र के साथ भूख कम हो जाती है, साथ ही कई बारी दांतों की भी समस्या हो जाती है, तो वो एक बार में बहुत भोजन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए 2 बार भोजन ना करके उसको कई बार में लें, साथ ही बहुत ज़्यादा भोजन एक बार में ना लें, और इस उम्र में थोड़ी एसिडिटी की भी समस्या हो जाती है, तो पेट में जलन ना हो इसके लिए भी ये कारगर होगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार खाएं।
0: देखा, आस्था एक कॉलर अपने से फिर जुड़ा है। तो भैया अपना नाम बताइए।
3: हाँ, मेरा नाम पूनम पाल है, मैं दारागंज से बोल रही हूँ। मैम, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून, आपका क्या सवाल है? आप अपने मेरे मैडम से बात करिए।
3: हाँ जी,
0: बोलिए।
3: हाँ
0: डॉक्टर
3: जी,
0: साहब हमारे साथ हैं,
3: जी
0: आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, वो सुन सकती हैं आपको।
3: जी हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून
3: आपका आज का जो चैप्टर है उसी से संबंधित हमको पूछना है, हेल्थ
2: जरूर
3: से
2: बताइए।
3: संबंधित। हाँ जी मैम, मेरी जो है, मैं जैसे एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ नॉर्मली, मैं
2: जी
3: भी वर्किंग वूमेन्स हूँ,
2: जी
3: लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा खान पीन में कुछ ऐसा एडवाइस करें जिससे जो है। हाँ
2: बिल्कुल, देखिए, वज़न बढ़ना, खाली
3: जी
2: हम किसी एक चीज़ को दोष नहीं दे सकते, वज़न बढ़ने के
3: जी
2: बहुत सारे कारण होते हैं,
3: जी
2: और वज़न को कम करने के लिए भी उन सभी कारणों को हमको दूर करना होता है।
3: जी
2: अगर हम, क्योंकि मैं यहाँ पे आहार के बारे में बताने आई हूँ, तो सबसे पहले
3: जी
2: हम
3: जी
2: उसी को ही लेते हैं
3: जी
2: कि खाने के लिए
3: जी
2: आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले चिकनाई युक्त चीज़ें और मीठी चीज़ें, ये दो
3: जी
2: चीज़ों से परहेज़ करें जितना हो सके
3: जी
2: उतना। और खाली ये नहीं है कि आजकल ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि शक्कर सफ़ेद है वही नुकसान करती है, तो गुड़ खा लो, शहद खा लो, मिश्री खा
3: जी
2: लो, सब भाई बहन हैं, सभी का ही
3: हाँ
2: अंदर जा करके वज़न बढ़ाने में रोल होता है, तो उससे भी दूरी
3: जी
2: बनाएं। और चिकनी
3: जी
2: चीज़ों में सिर्फ तेल घी ही
3: जी
2: नहीं, चिकनी चीज़ों
3: जी
2: में आपका जो चीज़ें जैसे तली हुई हैं, बोले हम तो नमकीन, दाल मोठ, ये सब तेल में
3: जी
2: बन के आती है, और घर
3: हाँ
2: पे
3: जी
2: तो इसको बना पाना कोई बहुत लोग नहीं बनाते होंगे, ज़्यादातर हम बाज़ार से लाते हैं, और जब हम खाना शुरू करते हैं तो हाथ भी नहीं रुकता है। तो
3: जी
2: इन चीज़ों से आप दूरी बनाएं, बिस्किट्स हैं इनसे भी दूरी बनाएं, मैदा युक्त
3: जी
2: चीज़ों से आप दूरी बनाएं, और
3: जी
2: जैसा मैंने कई बार अभी आज के प्रोग्राम में बताया कि खाने
3: जी
2: को डिवाइड करके खाएं, और जैसे कुछ
3: जी
2: लोग क्या करते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, तो ऐसा
3: जी
2: कहा गया है और
3: जी
2: ऐसी स्टडीज़ भी हैं, जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं उनके वज़न
3: जी
2: बढ़ना बहुत बड़ा एक कारण
3: कारण
2: होता है।
3: जी
2: तो आप नाश्ता ज़रूर लें, और रात का खाना
3: जी
2: बहुत देर से ना खाएं, उसको जल्दी लेने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना देर से
3: हाँ
2: खाएंगे उतना देर से नमक पहुंचेगा, वो शरीर में आपको भारीपन देगा, और धीरे
3: जी
2: धीरे, और वो एक आपके दिनचर्या को भी गड़बड़ करता है, जिससे कि
3: जी
2: मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा और आपको मोटापा
3: जी
2: आएगा। दूसरी बात
3: जी
2: करें तो स्ट्रेस को कम करिए, वो भी आपके पेट का घेराव बढ़ाएगा। तो
3: जी
2: तनाव को आप जैसे भी दूर कर सकते हो, टहल के, मेडिटेशन करके, योग करके, उसको भी दूर करने की
3: जी
2: कोशिश करें। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि आप अच्छी नींद लें, कोशिश करें करीबन 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं। चौथी
3: आठ
2: बात,
3: घंटे तो नहीं हो पाता है मैम, यह है कि 5 घंटे तक तो कर ही लेते हैं।
2: आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा, आप जब भोजन
3: जी
2: जल्दी करने लगेंगे रात में तो अपने आप नींद हो
3: जी
2: जाएगी, और कोई भी ऑफिस मुझे नहीं लगता 6 बजे से पहले होता है सुबह में, तो आप जल्दी उठ
3: हाँ
2: सकते हैं, जल्दी सोना बस उसके लिए ज़रूरी है।
3: हाँ नहीं

0: अब हम लोगों का, जैसे मैं टीचिंग जॉब में हूँ तो हम लोगों को थोड़ा जल्दी निकलना भी होता है,
1: समझती हूँ,
0: तो निकलना होता है।
1: तो आप लेकिन कुछ खा के जरूर निकलिए, अपने साथ डब्बा लेकर के भी जाइए। और
0: टिफिन तो हम लोग ले ही जाते हैं मैम, जैसे सुबह मेरी थोड़ा सा आदत है अंकुरित खाने की, तो मैं सुबह मूंग वगैरह भिगो ही रहती हूँ तो खा ही लेती हूँ।
1: हाँ हाँ देखिए, और बहुत डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ ये एक जनरल मेरी जो मैं आपको यहाँ पे मदद कर सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म से, वो यही है कि आप उसी समय को सदुपयोग करके खाने को दिन भर में 4 से 5 बार में डिवाइड कर दें, और जिन बिंदुओं को मैंने आपको बताया है उन पर काम करें।
0: बिल्कुल,
1: ओके, थैंक यू,
0: थैंक यू मैम।
2: डॉक्टर साहब, एक सवाल हम पूछे चाह।
1: हाँ जी बताइए।
2: का भोजन छोड़ के खाली फल या सलाद खाए से भी वजन कम किया जा सकते हैं?
1: हम बिल्कुल, देखिए भोजन छोड़ना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, और फल और सब्जियां भी भोजन का ही एक भाग है, तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे हमको जो चीज़ें मिल रही हैं वो हमको बीमारी से ज़रूर बचाएंगी, लेकिन भोजन की भी बड़ी आवश्यकता है। पोषण तक जो पोषक तत्व होते हैं उसमें विटामिन मिनरल ही खाली काफ़ी नहीं होते हैं, उसमें हमें और भी चीज़ें चाहिए। तो भोजन में जो मैंने अभी पहले भी बोला था कि हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग भारत में, हमारी जो थाली है उसमें खाली सब्जी और फल से काम नहीं चलेगा, संपूर्ण भोजन ही हमारे को पोषकता से भर सकेगा।
3: अच्छा मैडम, एक सवाल हमरो बाटे कि एक स्वस्थ व्यक्ति के दिन भर में मैंने कितना खाए चाहे का छाए?
1: देखिए, एक कहते हैं ना, एक साइज सब पे फिट नहीं होता है, ऐसे एक इंसान का दूसरे इंसान से बिल्कुल भी आप एक नहीं बता सकते कि इतनी मात्रा इसको खानी है तो अगले को भी इतनी ही खानी है। हर एक चीज़ हर एक पे नहीं उतनी ही लागू होती है, तो बहुत इसका सही उत्तर दे पाना, एक्यूरेट उत्तर दे पाना मेरे लिए, मैं देने में असमर्थ हूँ।
2: तो देखिए, एक कॉलर और जुड़ गया है नंबर सबके साथ है। तो हेलो
4: मैम, नमस्ते।
2: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
4: मैम हरिराम मौर्य प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
2: जी हरिराम जी, बताइए, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
4: मैम जानकारी ये चाहिए मैम कि मैं ड्राइवरी करता हूँ।
1: हाँ जी,
4: हेलो।
1: हाँ जी बोले, आपकी आवाज आ रही है।
3: हेलो,
4: हेलो।
3: हाँ बोलिए
4: मैम। नमस्ते।
1: नमस्ते, बताइए।
4: मैं हरिराम मौर्य प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी बताइए मौर्य जी।
4: जी जी मैम, एक जानकारी चाहिए हमको।
1: हाँ बताएं।
4: कि मैम जैसे मैं ड्राइवरी करता हूँ और सुबह हल्का खाना खाता हूँ, उसके बाद भी मतलब थोड़ा सा डाइट मेरी बढ़ रही है, तो इसके क्या सुझाव है?
1: हल्का खाना खाते हैं, डाइट बढ़ रही है, मतलब अगला भोजन जो है वो आप भारी कर लेते हैं? अच्छा, देखिए इसके लिए आप मुझे बताइए पहले, आप सुबह नाश्ते में क्या खा के चलते हैं?
4: मैम सुबह में तो नाश्ता नहीं हो पाता है, इसलिए कि हम लोग ऑफिशियल ड्यूटी वाले हैं
1: जी,
4: तो 2 रोटी खाना घर से खा के आता हूँ और दोपहर में फिर लंच लेके आता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। और लेकिन एक काम आप करेंगे, अगर नाश्ते में रोटी के साथ सब्जी और साथ में दूध या दही का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भूख थोड़ी शांत होगी, और कोशिश करिए नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच में एक फल ले लें, या आपके लिए मुमकिन हो तो मठा ले लें साथ में, तो इससे आपकी भूख थोड़ी शांत होगी।
4: जी मैम, बाकी मैम जैसे कि मतलब कुछ खा भी लेते हैं बार बार, मतलब जैसे भूख की एहसास होगी, मतलब कुछ खाना भी नहीं खाया हूँ, तो इससे दिन पर
1: कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके लिए यही है कि आप थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं, और मैंने जैसे आपको बताया कि नाश्ते में दूध या दही का इस्तेमाल करें, और थोड़ा सा मतलब शरीर में ना रेशेयुक्त चीज़ें और प्रोटीन वाली चीज़ें पहुंचेंगी, तो ये आपकी भूख थोड़ी कम होगी उससे, तो इसीलिए मैंने बोला कि दूध या दही का समावेश करें, और बीच में 10-11 बजे आप सुबह जैसे निकल जाते हैं तो खाए हुए आपको 6 घंटे हो जाए, उसके बाद आप भोजन करेंगे तो लाजमी है कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, तो बीच में आप कोई फल ले लें और साथ में मठा या छाछ का इस्तेमाल करें, उससे थोड़ी भूख कम होगी।
2: डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रही थी कि जैसे आपने सबका बताया, लेकिन महिलाओं विशेषकर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के भोजन में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
1: हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी विषय है। देखिए सबसे पहले तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने ऊपर, कि धीरे धीरे वो देखती रहें कि उनका वज़न बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि

0: एक अच्छा इंडिकेटर है कि उनका स्वास्थ्य सही है और साथ ही उनके बच्चे का भी स्वास्थ्य सही है और उनकी सही से ग्रोथ हो रही है। तो उनके लिए अगर हम बात करें तो उनको भी दिन भर में, देखिए मात्रा तो नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इंसान के हिसाब से होती है, तो लेकिन उनको जो खाने में ज़रूरी है वो ये है कि दूध दही, शुरुआती दिनों में बहुत भूख नहीं लगती है और लोग, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से हैं वहाँ पे लोग कहते हैं कि दो लोगों के बराबर खाना खाओ, ये बिल्कुल गलत है। तो वज़न को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा लेना है, एक जो 8 से 10 किलो तक वज़न बढ़ना चाहिए उसी को टारगेट लेकर के चलना है। तो
1: अच्छा,
0: थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाते रहें और साथ में कच्चे पपीते को अवॉइड करना है।
1: अच्छा
0: इसके
1: आस्था
0: अलावा लगभग सभी चीज़ें खाई जा सकती हैं।
1: आस्था देखा, एक कॉलर और जुड़त है। हेलो।
2: हाँ सर, प्रणाम सर जी।
1: हाँ, प्रणाम।
2: हाँ
1: नमस्ते।
2: सर, हमारी श्रीमती है ना, कुछ जानकारी डॉक्टर साहब से लेना चाहती कुछ।
1: हाँ बिल्कुल, पूछिए। हाँ
3: हेलो,
0: जी बताएं, नमस्कार
3: नमस्ते डॉक्टर
0: बताएं।
3: साहब, ऐसा है ना,
0: जी बोलिए।
3: हाँ जी, हाँ, रात में नींद, जैसे हमारी जल्दी नींद नहीं आती है
0: हाँ जी
3: और सुबह जो है लेट में उठते हैं ठीक।
0: जी
3: हाँ, अब रात में ये तो 12 बज जाता है तो लेटने में
0: जी
3: नींद नहीं आती।
0: हाँ
3: हाँ,
0: जी
3: तो इसीलिए हम कहे देर सुबह फिर देर लेट में उठे से थोड़ी दिक्कत होती है।
0: जी आप मुझसे
3: हेलो,
0: क्या
3: हाँ
0: जानना चाहते हैं इस बारे में,
3: यही जानना चाहती
0: कि देर से क्यों उठती हैं और आप देर से सो रही हैं, तो देर नींद नहीं आ रही है, ये
3: हेलो।
0: समस्या है। हेलो।
3: हाँ तो क्या करें कि रात में नींद आ जाए बराबर।
0: आपकी दिनचर्या में गड़बड़ है कहीं पे, आप
3: हाँ,
0: कोशिश करें।
3: रात में
0: हाँ,
3: थोड़ा लेटने में टाइम लग जाता है, 12 बज जाता है।
0: ये देखिए अभी तो आपको शायद महसूस नहीं हो रहा है पर ये बहुत
3: हाँ
0: अच्छी चीज़ नहीं है, कोशिश करें, ये आप ही को कोशिश करनी है, मैं सिर्फ राह दिखा सकती हूँ, चलना आपका काम है। कोशिश करें जल्दी सोए, जल्दी सोने
3: हाँ
0: से
3: जल्दी तो सोने करते हैं, मतलब घर में जो है खाना पीना है लोग लेट खाते हैं।
0: ये सब भी आप ही की जिम्मेदारी है जिसको आपको ठीक करना है। आप जल्दी सोएंगी तो आप जल्दी उठेंगी, इससे आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी नहीं हो रहा है लेकिन कभी ना कभी आपको हृदय संबंधी या मधुमेह ऐसी वाली समस्याएं, नहीं सोने से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं जो कि आपको हो सकती
3: हाँ
0: हैं, तो उससे
3: हाँ
0: आपको
3: वजन भी
0: खुद को ही
3: इसलिए बढ़
0: बचा,
3: जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वही सब द्वार है कहना चाहिए बीमारियों का, तो वहीं पे खुलता है, तो आप ही को इसके लिए खुद की मदद करनी है।
3: हाँ साहब, बात तो ठीक कर रहे हैं आप, मुझे ये है
0: जी
3: कि अब
1: डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रही थी कि जैसे आजकल लोग कहते कि अजवाइन पानी पीला, अजवाइन पानी, जीरा पानी, सौंफ, तेज पत्ता, तो क्या ये सब कारगर होते हैं पिए के चाहिए?
0: इनको इन्फ्यूज्ड वाटर्स कहते हैं। देखिए इसका सब लोगों के लिए तो बहुत इस्तेमाल नहीं है और बहुत लंबे समय तक लेना भी इसके लिए बहुत कारगर है ऐसा मैं नहीं बोलूँगी। कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें कि इसको कुछ समय के लिए दिया जा सकता है, पर अननेसेसरली इसका लोड अपने ऊपर बहुत सारे स्पाइसेस का यानी मसालों का बहुत ज़्यादा लेना बहुत अच्छा नहीं है। जैसे कोविड के टाइम का भी याद करिए आप, तो बहुत लोग काढ़ा बना बना के पीते थे और उसके बाद से फिर ये इन्फ्यूज़ वाटर का भी आ गया है, इसको लोग पहले भी करते थे, लोग कुछ कहते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए, पर ऐसा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है कुछ भी, आप पानी भी पी लेंगे तो भी डिटॉक्स हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा मैं यही बोलूँगी मसाले ओवरलोड ना करें अंदर, और हर रोज़ लें ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभार इनको कुछ अवस्थाओं में ही लिया जा सकता है, वो भी बहुत लंबे समय के लिए नहीं।
1: ओके डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं,
0: जी
1: उनको
0: ज़रूर लें।
1: सुनते हैं जी। हेलो,
4: यस मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते,
4: मैं
1: कौन बोल?
4: प्रयागराज से पूनम सिंह बोल रही हूँ।
1: जी पूनम सिंह बताइए, हमारे साथ
4: अच्छा,
1: डॉक्टर अर्पणा सक्सेना जी हैं, आप अपना सवाल करिए उनसे।
4: मैम मुझे विटिलिगो, व्हाइट स्पॉट होता है उसकी प्रॉब्लम है, तो
0: जी
4: मुझे समझ में नहीं आता, कोई कहता है कि खट्टा खाओ, कोई कहता है ऐसे मत करो, बहुत चीजें करे। मैं बाकुची का प्रयोग करती हूँ, उसका तेल लगाती भी हूँ और बाकुची खाती भी हूँ,
0: जी
4: लेकिन उतना असर नहीं कर रहा। क्या डाइट चार्ट से कुछ इसमें रोक लग सकता है, इसमें बढ़ रहा?
0: देखिए इसके लिए ना

0: आपको एक डाइटिशंस भी अलग अलग फील्ड्स के होते हैं, ठीक है।
1: जी
0: तो जो भी जना डर्मा में जॉब कर रहा हो, जो भी उसकी डाइटिशंस हैं, वो आपकी इसमें मदद कर पाएंगी, क्योंकि
1: जी
0: इसमें भी बहुत सारा रोल है डाइट का। लेकिन इसके लिए आपको
1: हाँ
0: एक स्पेसिफिक डाइटिशन जो कि डर्मेटोलॉजी में काम कर रही हो, वो आपकी मदद कर
1: जी
0: सकती हैं।
1: थैंक यू।
2: अच्छा मैडम, एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहते कि का नाश्ता छोड़ना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है? अगर है तो काहे?
0: अभी एक कॉलर से बात भी हो रही थी कि वो बोल
2: हाँ
0: रही थी कि नाश्ता नहीं करते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
2: हाँ
0: मैंने
2: हाँ
0: भी तब भी बताया था कि नाश्ता अगर आप नहीं खाएंगे तो उससे पेट का घेरा बढ़ेगा, जिसे मोटापा भी कहते हैं, और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी बीमारियां भी आएंगी। साथ ही जब आप सुबह नहीं खाते हैं तो आपको एसिडिटी भी हो जाती है, और साथ साथ जब आप नहीं खाएंगे सुबह का नाश्ता तो दिन का खाना यकीनन ज़्यादा खाएंगे, वो भी मोटापा आपका बढ़ाएगा।
2: बिल्कुल। आज सा देखा, एक कॉलर और जुड़ा था हमसे। हेलो
3: हेलो
2: हेलो।
3: हेलो।

0: ओके
1: अच्छा मैडम, एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहते कि का नाश्ता छोड़ना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है? अगर है तो काहे?
0: अभी एक कॉलर से बात भी हो रही थी कि वो बोल
1: हाँ
0: रही थी कि नाश्ता नहीं करते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
1: हाँ
0: मैंने
1: हाँ
0: भी तब भी बताया था कि नाश्ता अगर आप नहीं खाएंगे तो उससे पेट का घेरा बढ़ेगा, जिसे मोटापा भी कहते हैं, और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी बीमारियां भी आएंगी। साथ ही जब आप सुबह नहीं खाते हैं तो आपको एसिडिटी भी हो जाती है, और साथ साथ जब आप नहीं खाएंगे सुबह का नाश्ता तो दिन का खाना यकीनन ज़्यादा खाएंगे, वो भी मोटापा आपका बढ़ाएगा।
1: बिल्कुल। आज सा देखा, एक कॉलर और जुड़ा था हमसे। हेलो
2: हेलो
1: हेलो।
2: हेलो
1: हाँ
2: जी, नमस्ते। मैं आशुतोष कुमार पाल बात कर रहा हूँ, नारागंज से। जी
1: जी जी बताइए। हमारे साथ डॉक्टर अर्पणा सक्सेना जी हैं, आप अपना सवाल करिए उनसे।
2: जी हम जो है गर्मी में जैसे सादा भोजन, घर का ज्यादातर निर्मित भोजन व्यंजन भी लेते हैं,
0: जी
2: क्या हमारे आहार में जो है कोई ऐसे ही खास तत्व या खास व्यंजन की जरूरत पड़ेगी जिससे हम अपने दिनचर्या को संतुलित रखने में जो हमारी मदद करे और भारीपन महसूस ना हो?
0: देखिए आशुतोष जी, आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगी, भारीपन यकीनन आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे होंगे जिससे आ रहा होगा, और एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी नींद नहीं पूरी हो रही हो। और जैसे सुबह उठ करके कई बार क्या होता है, हम उठ तो बहुत जल्दी जाते हैं और पहला बार जो हम खाते हैं उसमें हम बजा देते हैं 10, तो वो एक बहुत लंबा समय जब हम खाली पेट रहते हैं तो वो भारीपन वहीं से शुरू हो जाता है, जो कि शाम होते होते वो एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे बचाएं अपने आप को, और इस मौसम में जैसा कि मैंने कहा है कि पानी ज़रूर लेते रहें, और बहुत ज़्यादा भारी भोजन जैसे स्पेशली इस मौसम की अगर हम बात करें तो बहुत तला हुआ खाने से भी आप अपने आप को बचाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी मेरे मन में एक बात है। जैसे हमारे ग्रामीण बहने हरन जोन हैं, तो मासिक धर्म में खाए पिए के का कोनो मतलब वो रहा था कि ई खाए ई ना खाए?
3: देखा आज था एक कॉलर और जुड़त हैं तो हर बात बात में हुए। हेलो हेलो हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैम
3: हाँ हाँ बोलिए
2: जी, मैं महेंद्र यादव बोल रहा हूँ, बरौद हंडिया प्रयागराज से। तो
3: जी। हाँ तो आप अपना प्रश्न पूछिए।
2: मैम, जैसे कि खाना खाने के बाद पेट में हल्का दर्द होने लगता है।
0: हाँ जी नमस्कार। आपके
2: जी
0: पेट
2: नमस्कार।
0: में खाने के बाद दर्द होने लगता है,
2: जी
0: देखिए उसका प्रॉबेबल कॉज एक एसिडिटी हो सकता है, वही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप बहुत देर खाली पेट रहते हैं और उसके बाद जब आप खाएंगे तो एसिड क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण भी आपको पेट में दर्द रह सकता है। पर अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आप
2: हाँ
0: इसके लिए ज़रूर डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि एक दो दिन तो ठीक है लेकिन अगर रोज़ हो रहा है तो ज़रूर से दिखाएं।
1: देखा
0: धन्यवाद।
1: आस्था,
0: हाँ
1: डॉक्टर साहब सब हम ही पूछे चाहब
0: जी
1: कि
0: बताएं।
1: मधुमेह और उच्च रक्तचाप के मरीजों के लिए, देखा अभी हम प्रश्न पढ़त रहे, तो भोजन में कौन कौन बातन का ध्यान रखे के चाहे?
0: मधुमेह और उच्च रक्तचाप, पहले तो कोशिश करें इन दोनों ही मरीजों को कि आप वज़न ना बढ़ने दें। इसके अलावा खाने को थोड़ा थोड़ा करके खाएं, मीठी चीज़ें बंद करें, और नमक का प्रयोग भी सादा नमक यानी जो सफ़ेद नमक आता है आयोडाइज्ड, उसका इस्तेमाल करें कम मात्रा में।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे सबके साथ है। तो हेलो हेलो। जी अपना नाम बताएं।
4: जी मेरा नाम राजकमल है, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
1: जी राजकमल जी,
4: जी
1: आप अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं।
4: मैम, ये कह रहे थे हमको मधुमेह की शिकायत है, तो
0: हाँ जी
4: ऐसा क्या डाइट लेंगे जिससे हमको रिलीफ थोड़ा मिले?
0: हाँ जी बिल्कुल। इसके लिए तो आपको ये करना है, एक तो बहुत मीठी चीज़ें जो भी हैं या किसी भी तरह का मीठा, मिठाई, शक्कर, गुड़, शहद सब का परहेज़ करें।

0: इसके अलावा कोई भी फल का जूस ना लें। ये अमूमन गलतियाँ हो जाती हैं कि लोग जूस पी लेते हैं जिससे भी शुगर बढ़ जाती है, तो फल का जूस, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, इनसे भी परहेज़ करें। इसके
1: मैम
0: अलावा
1: कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी हम नहीं पीते हैं और
0: बहुत
1: शरबत
0: अच्छी
1: वैसे
0: बात,
1: भी नहीं पीते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए हों। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे
1: अभी
0: एहतियात,
1: मैम जेनेटिक है ये मम्मी को है हमारे।
0: हाँ तो जेनेटिक कारण तो है ही, इसके अलावा थोड़ा सा उसमें योगदान हमारा भी हो जाता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो भी आप पकड़ सकते हैं, और जैसे हो सकता है आपको लेटर स्टेजेस में होता, लेकिन कुछ आपकी कमियां रह गई हों जिसके कारण कि आपको ये समय से पहले आ गई है। लेकिन कोई बात नहीं, आजकल बहुत ये तो बहुत हो गई है लोगों को, लेकिन इससे लड़ना हमारा काम है। तो हमें अपने आप को, अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए ये करना है कि थोड़ा थोड़ा करके आप भी कई बार खाएं। जैसे मैंने बताया, मीठी चीज़ें बिल्कुल ना लें। अगर वज़न
1: नहीं मैम
0: अत्यधिक है,
1: जहाँ नहीं पीते हैं।
0: नहीं बहुत अच्छा करते हैं, और खाने में थोड़ा दूध दही का समावेश करें। ऐसी भी भ्रांति है, लोग दूध भी लेना बंद कर देते हैं। आप दूध भी ले सकते हैं,
1: दूध
0: और
1: तो मैम हम बचपन से ही नहीं पीते हैं, दही ही खाते हैं बस।
0: हाँ दही खा सकते हैं आप। बाकी सभी चीज़ें लगभग खाई जा सकती हैं, रोटी भी ले सकते हैं आप, दाल भी लीजिए। दही आपने बोला आप दूध नहीं लेते हैं तो आप दही लेते हैं, और खूब सारी खाने में सब्जी और सलाद की मात्रा इस्तेमाल करें।
1: मैम रोटी में गेहूं वाली रोटी खाएंगी और कोई मोटे अनाज के?
0: देखिए खाने को आप नॉर्मल जो गेहूं का आटा है उसको भी ले सकते हैं, पर मोटे अनाज की भी अगर आप उसको अच्छे से पचा सकते हैं, आपकी पाचन शक्ति इतनी है कि आप उसको पचा सकें, इससे कोई गैस नहीं बन रही है, तो बिल्कुल उसको भी लिया जा सकता है।
1: मैम यही तो अच्छा है, गैस वैस की दिक्कत कभी नहीं हुई।
0: नहीं तो उसको ले सकते हैं।
2: आस्था
0: जी
2: देखा, एक कॉलर हमसे और जुड़त है।
0: बिल्कुल।
2: हेलो हेलो
1: हेलो,
2: हेलो।
1: हाँ सर नमस्कार।
2: हाँ हाँ नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे भैया? जी जी अपना नाम बताइए प्लीज, अपना नाम बताएं।
1: हरिश्चंद्र सोनी।
2: अच्छा ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से।
0: हाँ जी मिस्टर सोनी बताएं।
1: हाँ सर, वैसा है हमारी एज 70 साल की है, तो रात में सोने में सर थोड़ा नींद बहुत देर में आती है सर।
0: ये आहार संबंधी समस्या, ये ज़रूरी नहीं है, ये दिनचर्या संबंधी समस्याएं हैं। आपकी दिनचर्या
1: अच्छा
0: सुव्यवस्थित नहीं होगी जिसके कारण ऐसा हो रहा है। आप कोशिश करें कि एक तो रात का भोजन जल्दी लें, और रात को सोते वक्त थोड़ा सा, क्या आप दूध वगैरह पीते हैं रात को सोते वक्त?
3: शायद आवाज नहीं आ पा रही है, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे एक प्रश्न पूछा था मैंने अभी
0: हाँ
3: थोड़ी
0: जी
3: देर
0: बताएं।
3: पहले, कि जैसे हमारे ग्रामीण बहनें हैं तो मासिक धर्म में वो का खाएं पिएं, ये थोड़ा सा इस पे बताएं आप।
0: देखिए उसमें रक्त का स्राव ज़्यादा होता है उस समय पे, तो इसके लिए एहतियात ये बरतें कि आपके, आप ध्यान रखें कि आपके शरीर में खून की कोई कमी ना हो, ना होने पाए। और ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, तो शारीरिक प्रक्रिया जिसको को होना ही है, तो आपके शरीर में खून की कोई कमी ना हो, इसलिए आयरन और आयरन के से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज फूड्स लें, और अगर आप वेजिटेरियंस भी हैं तो भी ढेरों चीज़ें हैं जिसको, जिसका समावेश आप कर सकते हैं, तो उनको लें। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो आप मेवा का समावेश करें, तिल को लें, पम्पकिन सीड्स आती हैं, अंजीर होती है या मुनक्का है, इन सबको लें। साथ ही दूध, दही, दालों का भी प्रयोग करें, और कोशिश करें विटामिन सी युक्त चीज़ें जैसे आंवला, नींबू, संतरा, या आप बोलें तो अनानास, अमरूद, इनका भी इस्तेमाल करें। इससे आपका आयरन शरीर में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और खून की कमी नहीं हो पाएगी।
2: आस्था जी
0: देखा
2: डॉक्टर।
0: एक कॉलर और जुड़त है। हेलो
1: हाँ
0: हेलो।
1: मैम नमस्ते।
2: हाँ नमस्ते भैया, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
2: अपना नाम बताएं।
1: मैम मेरा नाम सचिन दुबे है
2: हाँ हाँ
1: और मेरी एज 19 साल है।
2: हाँ हाँ तो आप
1: और
2: अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से।
1: जी मैम मेरी शारीरिक जो
0: जी दुबे जी,
1: विकास है बहुत धीमी गति से हो रही है,
0: अच्छा
1: तो
0: धीमी
1: उन्नीस
0: गति।
1: साल मेरी एज है, मैं क्या करूँ? एक्सरसाइज वगैरह मैं करता रहता हूँ।
0: देखिए कई बार शरीर की बनावट ही ऐसी होती है, आपके जो पेरेंट्स हैं शायद उनका भी ऐसा हो, या जो उनसे पहले वाली पीढ़ी थी उनमें

0: भी ऐसा रहा हो, तो एक तो जेनेटिक कारण भी हो सकता है, और अगर आपको कहीं से भी कमज़ोरी है या आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं तो आपको थोड़ा चिंता करने की ज़रूरत है। और आप में अगर अगर अच्छे से स्फूर्ति भरा दिन निकलता है आपका, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं रहना है।
1: जी
2: देखो डॉक्टर साहब, आप एक सवाल हमसे और बा
0: जी
2: कि आज की युवाओं के लिए आपका सबसे महत्वपूर्ण पोषण संबंधी संदेश आपके हिसाब से का होए के चाहे?
0: इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और कहीं से भी बताते हैं डाइट के बारे में या बीमारी के बारे में या इलाज के बारे में, उस पर आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें जब तक कि आप उसको वेरीफाई ना कर लें। और एक उचित माध्यम से ही, एक जो उस फील्ड के लोग हैं उन्हीं से ही, जैसे एक डाइटिशन जिनके क्रेडेंशियल्स प्रॉपर हों, ऐसे ही डॉक्टर्स जो कि क्रेडेंशियल्स उनके ठीक हों, उन्हीं से ही जानकारी लें और आगे की सलाह लेके आगे चलें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके अर्पणा सक्सेना जी, आप इतनी सरल और उपयोगी तरीके से भोजन और पोषण के बारे में इतना महत्वपूर्ण जानकारी दीन। तो याद रखें, अच्छा भोजन खाली पेट ना भरत, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के नींव रखत है। यही
2: जी
3: बात
2: बिल्कुल,
3: इनके साथ है, सबके धन्यवाद करत भाई, अपने श्रोताहरण के, अपने कॉल करे वालन के, सबके
2: बहुत
3: धन्यवाद
2: बहुत बहुत
3: करत भाई।
2: धन्यवाद,
3: हमार और रीता बहनी के नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी ग्रामीण बहनें अपना विशेष हेलो पनघट कार्यक्रम सुन रही थी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था।

0: और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने

0: किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर

0: लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमरीका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मध्याह्न के 2:30 में और ये समय है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का, तो आइए सुनते हैं।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।

0: मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
1: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
0: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
1: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
1: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
0: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
1: जी,
0: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
1: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
0: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
1: जी श्रोताओं, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
0: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
0: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
1: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
0: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
1: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
0: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
1: जी,
0: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की

0: प्रक्रिया पर बात कर ली जाए, वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
0: जी।
1: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात यह है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी, यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ।
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
3: फूलों से नित हंसना सीखो,
2: भौरों से नित गाना,
3: भौरों से नित गाना,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
3: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: सीखो शीश झुकाना,
3: सीखो शीश झुकाना,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
3: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: कोमल भाव बहाना,
3: कोमल भाव बहाना,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
3: दूध तथा पानी से सीखो,
2: मिलना और मिलाना,
3: मिलना और मिलाना,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
3: सूरज की किरणों से सीखो,
2: जगना और जगाना,
3: जगना और जगाना,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
3: लता और पेड़ों से सीखो,
2: सबको गले लगाना,
3: सबको गले लगाना,
2: दीपक से सीखो जितना,
3: दीपक से सीखो जितना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
3: हो सके अंधेरा हरना,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
3: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: सच्ची सेवा करना,
3: सच्ची सेवा करना,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
3: जलधारा से सीखो आगे,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
3: जीवन पथ में बढ़ना,
2: और धुएं से सीखो हरदम,
3: और धुएं से सीखो हरदम,
2: ऊंचे ही पर चढ़ना,
3: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है, हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खो देंगे तालाब बड़ा सा।
3: खो देंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खो देंगे हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
2: बारिश का मौसम था वैसे भी,

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करे खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
4: कौवे भैया,

0: निकलो।
1: कौन-कौन भाई कौन-कौन हम सब मिलकर एक साथ, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काओ काओ काओ।
3: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
4: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
5: मेरा भी कुछ यही हाल है।
2: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो। काम काम काम।
4: क्या
5: क्या
4: क्या?
2: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
4: कू
2: नीचा सब तक सब सुनाए। सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना। काम
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
4: जो आज्ञा महाराज।
6: दम लगा के कू।
5: हईशा।
6: दम लगा के कू।
5: हईशा।
2: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं। काम काम काम। ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा। काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काम काम काम।
5: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
2: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
5: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
2: का का का।
7: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: ばい。パピー花ピエットじゃばい。
1: ガンガンガン。あれ？いつねとバスラッヒパカルリ？
2: バウバウバウ。あれ？ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: गांव गांव गांव कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गांव गांव शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
6: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
7: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
7: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
6: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौवे, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
6: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
7: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था।

0: चलो चले
1: चलो
0: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
1: हाँ, चलो
2: पिए दूजा पानी कब आएगी बरखा।

0: ये मर गया?
1: क्या पता?
0: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी।
1: अरे
0: पपी है भाई।
2: पानी।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हमारी स्टूडियो घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी ये सभा। शाम की सभा धरती के गीत कार्यक्रम से शुरू होगी 5 बजे। इस बीच हम विविध भारती के नेशनल नेटवर्क कार्यक्रम FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित करते रहेंगे।